0: जाने मन आ, जाने मन आ आ आ आ।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: क्रेजी शो है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अब ऐसे ही करेंगे ना। अब हम मतलब क्या चाहते हो, इससे भी हम एकदम इंसानों के जैसे बिहेव करने लगे जैसे हम नॉर्मल दिनों में करते।
0: फ्राइडे मॉर्निंग, नो जजमेंट, फ्राइडे मॉर्निंग जस्ट लेट अस जस्ट बी व्हाटएवर वी वांट टू बी एंड यू बी व्हाटएवर यू वांट टू बी, राइट?
2: या हम इसीलिए तो दवाई लेके नहीं आते फ्राइडे मॉर्निंग, बाकी दिनों हम एकदम एकदम अच्छे से रहते हैं। भाई थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक बड़ी अतरंगी रिश्तों के बारे में, बट अब मैं लाई हुई एक अतरंगी एक और चीज के बारे में। लीजा इनका नाम है, जब ये 11 साल की थी रेणुका, शी वेंट ब्लाइंड बिकॉज एक उनका ट्यूमर था विच वॉज प्रेसिंग उनके ऑप्टिक नर्व पे। ओके, सो ओवर द टाइम धीरे धीरे करके शी मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गई, कुछ नहीं देखता। तो उसने अपने साथ एक गाइड डॉग जो है कहते हैं जिसको एज अ सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड गाइड डॉग उसने रखा। ठीक है, 13 साल हो गए ऐसा करते करते। देन एक आम सी रात आई नवंबर की, अब ये लड़की हो गई है 24 साल की। तो इसने क्या यूजुअल जो रोज रोज करती है, तो उसने शी लीन डाउन अपने गाइड डॉग को गुड नाइट किस देने के लिए, एक्सीडेंटली इसका ठा करके लग गया कॉर्नर कॉफी टेबल से सर। और उसकी क्या कोई नहीं, उसने करा जाके सो गई, सुबह उठी शी कुड सी।
0: यार ये हिंदी पिक्चरें हैं यार, ये सच्ची बड़ी पुराने जमाने की घटिया वाली फिल्म थी।
2: हाँ बट क्या करूँ, बट डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। अब देन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हो सकता है, वो कहते हैं ना कि वो जो हम लोग पहले क्या करते थे, टीवी का रिमोट नहीं चल रहा होता तो वो ठाक ठाक ठाक करके एकदम करते थे कि कहीं कुछ तो कनेक्शन कहीं पे ठीक ही हो जाएगा, लग जाएगा। आई थिंक समथिंग लाइक दैट, दीस काइंड ऑफ मिरेकल्स आल्सो हैपन।
0: बिल्कुल, मैंने हाल ही में एक अंग्रेजी फिल्म भी देखी थी नेटफ्लिक्स पे, जिसमें कि एक आदमी जो हर जगह मेल डोमिनेटेड दुनिया में रहता था, सडनली वो पोल से टकराता है एंड व्हेन ही वेक्स अप ऑल द वुमेन इन हिज लाइफ हैव बिकम द बॉसेस एंड इट्स अ फीमेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। इट वाज क्वाइट अ फन मूवी बाय द वे। पर फिर उसको एंड में दोबारा से पोल पे जाके मारना पड़ता है टू कम बैक टू द रियलिटी एंड बाय देन ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग ऑल द वुमेन। सो आई थिंक hint hint yes, anybody wants to try
2: so now we know what to do with them. Okay.
3: Yeah. You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। Out loud moments to larger than life jungle ka madness. This entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वाइल्ड एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

0: एक हवा का झोंका आता है, मेरे पेट में घुस जाता है और उसके बाद मेरा पेट हो जाता है मोटा, और अगले ही महीने अगले ही महीने या अगले महीने भी क्यों, एक घंटे के बाद आई एम द मदर ऑफ अ बेबी गर्ल, लेकिन हवा का झोंका, यस दैट्स व्हाट मेड मी प्रेग्नेंट।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती।
2: मैं क्या सोच रही थी कि मतलब ये तो कहीं रेणुका मेरी ही बात नहीं कर रही थी कि जब सांस भी लेती हूँ हवा अंदर लेती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ कहीं, फिर उसके बाद इन्होंने तो कहानी में ट्विस्ट ला दिया। ओके व्हाट इज दिस,
0: ओ गॉड, मतलब 2021 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो दिस 25 ईयर ओल्ड इंडोनेशियन वुमन जिसका नाम था सिटी ज़ायना, शी मेड ग्लोबल हेडलाइंस उस टाइम पर, और ये खबर दोबारा से फॉर सम रीजन हैज बीन अराउंड, सो आई थॉट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट। तो इसमें क्या था, शी ओनली सेड व्हाट आई सेड जस्ट नाउ कि देयर वाज अ गस्ट ऑफ विंड दैट एंटर्ड हर बेली एंड देन उसका पेट एकदम से बड़ा हो गया एंड एक घंटे के बाद शी गेव बर्थ टू अ गर्ल। सो ये बात मेडिकल रियलिटी की तरफ जब गई तो मैंने कहा थैंक गॉड हमारा पेट तो पूरे टाइम मोटा होता है बट एक घंटे बाद वी डोंट कीप डिलीवरिंग, राइट। इट्स अ वेरी वेरी रेयर एंड अ वेरी स्टेल्थ फिनोमेना कहते हैं, जिसमें कि औरतें जो होती हैं दे आर नॉट अवेयर कि दे आर प्रेग्नेंट, सो इट हैपन्स समटाइम्स, राइट, क्योंकि उनकी बॉडी में हर चीज नॉर्मल चलती रहती है, दे डोंट हैव एनी सिकनेस, दे नथिंग इररेग्युलर, नथिंग एट ऑल, सो हर चीज बिल्कुल सही चलती रहती है टिल दे एक्चुअली गिव बर्थ। एंड द सेकेंड थिंग इज कि कुछ कंजर्वेटिव कम्युनिटीज में स्टिग्मा होता है ऑफ हैविंग चाइल्ड आउटसाइड ऑफ मैरिज, so women suddenly pretend and make up these stories कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। so इस केस में ये हुआ था कि हस्बैंड कुछ महीने पहले ही छोड़ के चला गया था एंड ऑब्वियसली लोगों ने ये कहा कि ये उसका है बट शी डजंट वॉन्ट टू से एनीथिंग एंड दैट इज व्हाई शी मेड अप द स्टोरी, बट इमेजिन एंड सम पीपल बिलीव ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो द थिंग, तेरा क्या कहना है?
2: बट There was a time जब हमारे यहाँ पे भी बिलीव करते थे ना कि वो जो देखा नहीं था वो टीवी से ऐसे बाबा जी के हाथ से लाइट गई और वहां से बच्चा ऐसे करके पैदा हो गया। अब मैं तो सवाल ये था कि उसको पता नहीं चला कि ये हवा घुसी कहाँ से।
0: हाँ उसने कहा ना मेरी बॉडी में घुस गई, शायद उसने लंबा सांस लिया होगा, योगा कर रही होगी,
2: कहाँ से।
0: ओके आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, हम सुनेंगे अगला गाना। गुड मॉर्निंग,
1: you're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere anytime the desi way.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
5: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जाएंगे तो क्या क्या पाएंगे, आइए आपको बताया जाए।
1: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Constable का एग्जाम, oh my god, थुल्ला basically, right?
0: जी जी, मस्ती मैडनेस पे रेणुका आंध्रा आपके साथ। भाई, उत्तर प्रदेश में जब कांस्टेबल के लिए एग्जाम होता है तो कैसे होती है चेकिंग रेणुका? कभी आपने इमेजिन किया है कैसी होती होगी चेकिंग?
2: नहीं, बताइए ना।
0: तो चेकिंग कुछ ऐसी होती है कि मेटल, जब वो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने से पहले, बाहर जो है पुलिस खड़ी होती है मेटल डिटेक्टर के साथ, ताकि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक चेक किया जाए ढंग से, एकदम लाइक थ्रू एंड थ्रू। अब जो मेटल डिटेक्टर, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज गॉन वायरल, जो मेटल डिटेक्टर, अब कहां क्या है कि क्योंकि चीटिंग करने वाले भी काफी यू नो प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो वो कहीं पर भी चिट वगैरह छुपा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो नॉट ओनली द फुल, जब फुल बॉडी कह रहे हैं तो हाथ पैर ये तो है, पैंट के अंदर ऐसे मेटल डिटेक्टर घुसा घुसा के भी उन्होंने पूरा चेक किया। ये था इस बंदे का मेटल डिटेक्टर चेक, ठीक है। फिर अगला बंदा जब आया, भाई सिर्फ पैंट में नहीं, फिर वही सेम मेटल डिटेक्टर अगले बंदे

0: के मुंह में घुसेड़ के किया जा रहा है। वही सेम मेटल डिटेक्टर ऐसे करके सबकी चेकिंग चल रही है, है? जी जी
1: ओह माय गॉड, सोच तू सोच, मैं
0: गाना वही सोच कहीं तो आ गया मेरा।
1: But why did they have to do that? मतलब तू सोच।
0: I mean, if I could only tell them ki ek word hygiene, I'm sure unhone suna nahi hoga, but then uska ek Hindi word bhi aata hai, like sir thoda sa to matlab soch lete
1: hain, matlab ye वो लंबा सा मेटल डिटेक्टर आपकी पैंट के अंदर जा रहा है और फिर उसके बाद वो आपके कपड़ों के अंदर ऊपर और फिर मुंह में भी, मुंह में क्या छुपा के लेके जा रहे हैं मेटल की उनको डालने की जरूरत है।
0: बट वही ना, यू नेवर नो आजकल कहां कहां से कैसे कैसे चीजें लीक हो रही है, कोई ये आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है।
1: दीज आर जस्ट
0: ऐसी दुनिया है,
1: दीज आर चीप थ्रिल्स ऑफ दोज पीपल जो एग्जाम ले रहे थे, चीप थ्रिल्स, ओके, उनको मजे आ रहे थे करने में कि रोक भी नहीं सकते और मजे भी बहुत आ रहे हैं।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: एक जबरदस्त कहानी है।
2: और टाइटल क्या है फिल्म का?
1: वेलकम टू द जंगल।
3: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट।
4: सबीना बोंडो, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, शक्ति एंड अक्षय कुमार।
3: From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
5: Welcome to the jungle.
3: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
6: Trailer khatam, paisa hajam.

0: लायन सिटी चैलेंज की बात करना चाह रहे हैं हम इस टाइम पर, और हम पूछना चाह रहे हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक हमें नहीं लिख के भेजा है द लायन सिटी चैलेंज। जी हाँ,
1: आर यू रेडी?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: This is your chance to let everybody know कि ये जो आप updated रहते हो सिर्फ ऐसे ही नहीं, there's a reason behind it and everyone should be like that. क्या आपने किया? LION type करके हमें भेजा and then करो यार, we are waiting over here. फिर करते हैं, फिर देखते हैं, और बिल्कुल शानदार आपको वो मौका जरूर मिलेगा। हमें तो पूरा यकीन है, आपको अपने ऊपर यकीन है कि नहीं, that you have to tell us.
0: तो एक बात पक्की है, मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग ना बैठ के टीवी पे गेम शोज देखना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन तब सोचते हैं यार मैं होता ना वहां पर इतना कमा लेता, यहाँ होता ना मैं इतना कुछ हो जाता, इतना कुछ जीत जाता, लेकिन जब ये मौका इन्हें दिया जा रहा है तो तब ये छुप के बैठे हुए हैं पीछे पीछे और नहीं लिख रहे हैं हमको। सो वेल, फॉर ऑल दोस पीपल जिन्होंने हमको भेज दिया है लायन लिख के, थैंक यू वेरी मच। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे हैं तो हमको जरूर बताइएगा। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म्स में आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो आप हमें देंगे, और उसके अलावा अ लिटिल स्मॉल एप्लीकेशन फी, जी हाँ पार्टिसिपेंट फी, वो दोनों की दोनों चीजें खत्म करके हमको भेज दो और फिर तैयार हो जाओ अपना हेयर कट वगैरह करा करू के, भाई अब तो कैमरे पे आना है, अच्छी छोटी मोटी बात नहीं है, सब देखेंगे। तो ये है आपका काम, ऑल यू हैव टू डू इज 9151-8963 पर send us the word lion and then obviously we will see you on the sets. हम छोटी उंगली पर नहीं, हम पांचों उंगलियों पर नचाएंगे आपको, आइए तो सही हमारे सामने। रेडियो मस्ती 24/7 द लायन सिटी चैलेंज awaits you. फिलहाल के लिए अगला गाना कमिंग अप, और हम मिलेंगे आपको अगले घंटे, कहीं जाना मत।

0: और हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस। जी हाँ, फ्राइडे सुबह का हमारा ये खास शो जो आप लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि हम बिल्कुल रोके नहीं, और हम भी नहीं रोक रहे, ठीक है, हमें भी मजे आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसका रिपीट शो सुन रहे हैं ऑनकोर, देन इट इज सैटरडे इवनिंग और इस समय 7 बज रहे हैं, है ना।
1: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Points कमाती हुई रेनुका, खबर देती हुई भी रेनुका।
0: बस तुम तो सिर्फ बैठो, हर कुछ करती हुई रेनुका, यही तो मैं बोल रही हूँ।
2: Friday. बॉस फ्राइडे,
0: पता है फ्राइडे मैं ही काम करती हूँ। एनीवे, तो अब यहाँ पर ये बात कर रही थी मैं कि भाई एक तनिष्क का जो शोरूम है गाजियाबाद में, वहाँ पर 4 करोड़ का हाइस्ट, ठीक है, वो भी 25 मिनट में सारा का सारा लेके भाग गए। अब यू नो दिस दिस गाय हु जॉइंड एज अ सेल्स पर्सन इस शोरूम में डेढ़ महीना पहले, ठीक है, नितिन वर्मा। अब नितिन वर्मा ने देखा कि भैया गहने ही गहने हैं, डायमंड है, गोल्ड है, बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, तो उसने बड़े प्यार से सबके साथ दोस्ती करी और फिर एक महीने के बाद में अनाउंस किया कि उसकी शादी तय हो गई है। अब शादी तय हो गई है तो ही वॉन्टेड टू थ्रो अ पार्टी, तो उसने कहा मैं आप सब लोगों के लिए पार्टी करूंगा, यहीं पर शोरूम में ही कर लेंगे पार्टी, कहीं आने की जरूरत नहीं है, लेट्स कंटिन्यू दिस इवनिंग, ठीक है। तो वो अपनी पार्टी वार्टी कर रहे हैं, बहुत सारा उसने शराब पिला दी टू द पर्सन जिसके पास मेन जो सारे महंगे वाले गहने थे उसकी चाबी रहती थी, और फिर उसको कहता है चल मैं तेरे को घर छोड़ा हूं। घर छोड़ने के लिए जाने लगा तो उसके बैग में से चाबी वाबी निकाल ली और फिर वापस आया दुकान पे। अब तक इसको ये पता लग गया था कि कोई अलार्म सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हेड ऑफिस कैमरा देखता है सीसीटीवी जो भी जहां भी लगा हुआ था। सो इसने अपना 25 मिनट लगा के एक अकम्प्लिस के साथ में पूरा का पूरा उड़ाया सब कुछ, 4 करोड़ की ज्वेलरी मार्केट में बेचनी भी शुरू कर दी है कह के कि मेडिकल के लिए कुछ कुछ चाहिए, पैसे चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन हमारे जो ये हेड ऑफिस के लोग थे उन्होंने देखा भी नहीं, अलार्म सिस्टम चला भी नहीं उनका कि भैया कोई घूम रहा है रात को वहां पर 25 मिनट। फिर पुलिस ने जाके सीसीटीवी देखा, पता लगा और फिर ये पकड़ा गया। लेकिन मतलब बंदे की हिम्मत देखो, हिम्मत क्या कहती हूँ,
2: हिम्मत तो सही है, ही वाज नॉट थरो रेनुका।
0: हाँ,
2: उसको तो पता होना चाहिए ना, इतने महीने उसने काम किया है सेल्स पर्सन, उसको पता नहीं, इसने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा अगर शोरूम खोल के रखा है तो कुछ ना कुछ तो कहीं तो सीसीटीवी का सिस्टम होगा ही ना,
0: कुछ तो होगा, इतना भी मतलब तनिष्क की बात हो रही है यार, कोई मजाक है, कोई दुकान थोड़े कोने की, तो मतलब भी तो बुद्धू बना हुआ ना फिर।
3: चलाई जाने
0: कहते हैं ना, चोरों को भी अकल तो बहुत जरूरी है भाई।
2: हमारे हालात मस्ती मैडनेस करते करते कैसे हो गए हैं रेनुका, हम देखो कैसी कैसी चीजों को नोटिस करने लगे कि he was not thorough in his plan।
0: अगली बार ठीक से करना, हम बल्कि बता रहे हैं उसको।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, दैट टू विद अ हाइब्रिड मॉडल फॉर योर कन्वीनियंस। 12 आवर्स ट्रेनिंग पर लेवल, फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस ऑफर्ड फॉर 14 ईयर्स ओल्ड एंड अबव। Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज नहीं कर पाते हो आप उसको एडमिट कर लो, क्या पता वो वायरल हो जाए.
3: आई एग्री.
2: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है. गैस
3: नहीं आता तो नहीं आता, हाँ बोलने में क्या प्रॉब्लम है. रेडियो मस्ती 24/7 इस पूरे के पूरे शो में 3 घंटे बॉलीवुड का खबर नहीं आता तो नहीं आता, नहीं आता. बताने में क्या है. हाँ बताओ
2: भाई. कुछ ऐसा है कि टोक्यो का सो क्या होता है कि मैं पहले क्विक ये चीज बताना चाहती हूँ. ये जो आप इंस्टाग्राम और ये सारे वीडियोस देखते हैं ना जहाँ पे प्रॉपर्टी में दिखाते हैं कि जहां जहां ये बंदा वॉक कर रहा है वो दरवाजा पहले से ही खुल जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, हाउ दीज वीडियोस आर बेसिकली टेकन. सो देयर इज ऑलवेज दिस एक बंदा होता है जिसने ग्रीन सूट पहन के रखा होता है. इट वर्क्स लाइक अ ग्रीन स्क्रीन. सो वेर एवर ही गोज दैट बंदा नीचे झुक के दरवाजा खोल रहा है एंड एवरीथिंग ही यू कैन नॉट सी बिकॉज इट्स ऑल देन वीडियो इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग व्हिच ब्रिंग्स एवरीथिंग लाइफ लाइक दैट. अब ये जो हमारे भाई साहब थे इन्होंने 7 मिलियन का ये पूरा एक अपार्टमेंट दिखा रहे हैं. अब इस अपार्टमेंट को इन्होंने वैसे ही किया, ग्रीन स्क्रीन पहनाकर कपड़े पहनाकर एक बंदा नीचे खोल रहा है. अब वो कहता है कि यहां तक तो मैंने कर लिया, अब ये ग्रीन कपड़े वाले बंदे को एडिट करके ट्रांसपेरेंट इनविजिबल कैसे करते हैं ये मैं मुझे नहीं पता कैसे करना है. ही पोस्टेड इट लाइक दैट ओनली. सो नाउ द वीडियो शोज दैट दिस ग्रीन कलर्ड गाय गोइंग एंड ओपनिंग द डोर्स एंड यू नो डूइंग एवरीथिंग एज इट इज एंड ही हैज रिटन इन द पोस्ट आई डोंट नो हाउ टू एडिट द ग्रीन गाय सो हियर इट इज.
3: हमने कोर्स बीच में छोड़ दिया था और फिर हमें आधा ही आता खाना बनाना, बाकी का खाना जो कच्चा पक्का है बाकी अब ऐसे ही खा लो. That is so cool, but it's being so honest, right? इसमें क्या गलत है?
2: Yeah. And it went viral. Like everybody is like in splits and loving ki. And it's looking so funny because this guy has no face. He's just wearing this green man is just going and opening and doing all those things.
3: See, eventually the target was to market it successfully and to make it viral, right? And that target was achieved. Uske beech mein kya kiya, janbuch ke kiya, nahi kiya, is a different story altogether. Kya baat hai? I like it. Antra, hum bhi aadha show chhod ke chale jaye. तुझे क्या लगता है?
2: हम आधे सीक्रेट्स तो अपने ऐसे आउट कर देते हैं कि 10 गाना नंबर 10 के बाद ही चले जाते.
3: हाँ चले जाते. मैं नहीं बता रही.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेंटल एगनी, हरासमेंट, अवॉइडेबल हार्डशिप, परसिस्टेंट इश्यूज फेस्ड बाय दिस पर्सन, ऐसी ऐसी चीजों के पीछे जो लोग नोट छाप रहे हैं ना आजकल. हमने शो की शुरुआत में बताया था अबाउट दिस अंकल एंड आंटी जो अमेरिकन एयरलाइंस से जा रहे थे और उनको 2.2 लाख मिले क्योंकि उनकी फ्लाइट डिले हो गई और उनको कितनी मेंटल एगनी हुई. और अब मैं बताने वाली हूँ चंडीगढ़ में एक औरत जिसने एक नई मर्सिडीज बेंस GLC 300 4MATIC SUV खरीदी थी, ठीक है, और उसका AC ना चलने की वजह से 77 लाख की जो गाड़ी थी, है ना, उसने उसको mental agony पहुंचाई. And of course, she won the case.
3: Crazy दुनिया, crazy खबरें, और हमारा ये crazy show. This is Musty Man.
2: अंतरा बहुत परेशान है, बोलो पहले तुम.
4: टॉपर होना भी आसान काम होता है नहीं ना, क्योंकि फिर सारी उम्मीद टॉपर से वैसी वाली की जाती है कि अरे एक अगर किसी, आप कभी भी देख लो किसी भी टॉपर का, अगर कभी किसी चीज में उसके कम मार्क्स आ जाए भाई, ऐसा मतलब तांडव उनके घर में और पूरे मोहल्ले में होता है कि ये कैसे हो कोई हो. तो इट्स लाइक द मर्सिडीज, मार्क की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि तेरा AC नहीं चल रहा.
2: हाँ,
4: तेरा AC नहीं चल रहा,
2: बिल्कुल
4: तेरा AC नहीं चल रहा.
2: अमीरों को मेंटल एग्नी भी ऐसी चीजों पे होती है ना, क्या करे
4: वो?
2: जी
4: क्या करे, उनकी थोड़ी ना गलती है, उनकी आदतें ऐसे करा रखी है, फिर क्या आप क्या ही बोलोगे.
2: तो मुझे एक बहुत अमीर आदमी ने एक बार एक ज्ञान दिया था कि अमीरों के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, सामान होता है, एवरीथिंग, लेकिन उनके पास एक और ऐसी चीज होती है जो बड़ी मुश्किल से कटती है और वो है टाइम. इसीलिए वो इन चीजों को ढूंढते हैं कि टाइम कैसे काटा जाए, इसीलिए वो उन लोगों को अपने साथ लगा के रखते हैं जिनको उनके पैसे चाहिए और वो लोग उनको टाइम देने को तैयार होते हैं. तो दैट इज द रीजन, जब आप किसी अमीर इंसान के पास पैसा लेने के लिए जाओ तो रिमेम्बर कि वो आपका टाइम भी बहुत सारा लेगा क्योंकि उसके पास बहुत है, तुम्हारे पास कम है. जलेबी बेबी कमिंग अप नेक्स्ट. लेकिन इस औरत
4: ने नहीं देगी है, शी शुड नॉट लेट मी स्पीक नाउ. इट्स वेरी बैड दैट शी नोज दैट ये ना इसकी स्माइल साइड ही लग रही है, गाना चला देते हैं अगला.
2: वो ठीक है, अगर तू मुझे अमीर बोलने वाली है तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं अमीर नहीं हूँ, ओनली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो इस औरत को 1 लाख रुपए मिले एज कॉम्पनसेशन जब उसने 2 साल तक केस लड़ा कंज्यूमर डिस्प्यूट में. ओके, और फिर उसके बाद 35,000,
4: ये ज्यादा हो गया.
2: बहुत ज्यादा,
4: ये इट्स नॉट अ फेयर डील.
2: आई एग्री. तेरे को क्या लगता है, ज्यादा मिलना चाहिए था? 77 लाख की कार थी.
4: तो उतना 2 साल के बाद 1 लाख रुपए मिला रेनू का, मैथ सही नहीं है.
2: मैं सोच रही हूँ उसको दिए ही क्यों, कुछ नहीं हो सकता.

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh-out-loud moments to larger-than-life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island-wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीन वर्ड्स, मतलब एक रीजन है जिसकी वजह से इसको ऐसे कहा जाता है, और कहा जाता है कि हर चीज की एक जगह होती है।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज
2: हर चीज, हर इंसान, हर काम का एक वक्त होता है, एक सही वक्त होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, और इस समय मस्ती मैडनेस का सही वक्त।
0: अब बात ये आती है कि आप बंदे या बंदी की क्रिएटिविटी या फिर उसका काम देखो, या उस वो कैसे ड्रेसअप होके आया वो देखो। आप क्या कहते हो वैसे?
2: दोनों,
0: विच वुड यू चूज? लाइक अगर आपका जो आपको जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं इज लाइक रियली गुड एट हिज और हर वर्क, बट हैज ड्रेस्ड अप लाइक शैबिली, नॉट टेकन मच एफर्ट अबाउट इट, या फिर कुछ ऐसा बहुत ही रिवीलिंग सा पहन के आ गए, व्हाट वुड यू?
2: I think the first thing I would do is look at the substance and not the कपड़े वपड़े। बाद में जाके बता सकते हैं उनको कि क्या करना है, पहले दिमाग तो देखो, बिकॉज वो ज्यादा रेयर है। राइट।
0: सो भविष्या जैन करके है, उन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया कि शी वाज इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स ए क्रिएटिव रोल के लिए। तो ये एक कैंडिडेट इनके पास इंटरव्यू के लिए आई, जिनका शी वाज वेयरिंग दिस टाइट क्रॉप टॉप ओवर द जीन्स, एंड क्रॉप टॉप के ऊपर व्हाइट कलर का टॉप था, उस पर लिखा हुआ था आई एम टू हॉट फॉर अ जॉब।
2: ये पहन के इंटरव्यू पे आई
0: जी। सो शी सेड दैट आई रिजेक्टेड हर इवन बिफोर द कॉन्वर्सेशन बिगैन, नॉट बिकॉज शी शोड स्किन और डिड नॉट वेयर फॉर्मल्स, बट बिकॉज द टी शर्ट रेड आई एम टू हॉट फॉर अ जॉब।
2: Well, I still feel that it was just a statement. It was maybe a conversation starter. Maybe the person thought it's a creative job, right? And creative job mein she was being creative while going for the interview. So thoda sa us insaan ko samajhna bahut zaruri tha.
0: My question comes from there, that there is a set of people who are sitting on those chairs jahan pe unko lagta hai ki bhai pehle to tum dhang ke kapde pehen ke aao.
2: But I have to admit, Antra, that hamari एक जॉक जो आई वुड से टिल डेट शायद मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी जॉक थी, वो इंटरव्यू के लिए जब आई थी तो उसने चप्पल पहनी हुई थी और काफ़ी शैबली ड्रेस थी। मैं थोड़ी सी हिल गई थी, बिकॉज मैं बहुत ऐसे देख रही थी कि यार कोई इंटरव्यू पैसे कैसे आ सकता है। फिर मुझे समझाया गया था कि क्रिएटिव लोग हैं, इनको जज मत करो, इनको इनकी केपेबिलिटी से जज करो, एंड आई केप्ट दैट फॉर एवर, बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ दे आर, सो इट्स ओके, जस्ट गिव देम दैट फ्रीडम, यू नो। कपड़े वपड़े डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द कॉन्टेंट, राइट?
0: कॉन्टेंट।
2: क्या बात है, देखो मैं पास हो गई आज, तो लड़की ने मुझे पास कर दिया
0: एकदम, मैं तो इंप्रेस हो गई।
2: बॉस की इज्जत बढ़ गई आज, बॉस की इज्जत बढ़ गई आज, तू शाम का 5 बजे का शो कर ले, ठीक है? चलो ओके।
0: बिना बुला रही है मेरे को, अब भी याद आया उसने ना मुझे कई काम बता रखे है, मेरे किए नहीं है। When I want you, when I need you, boy, you know that I know how to get you.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: और देखते ही देखते बस 10 बजने ही वाले हैं और मुझे लग रहा है कि आज हमने इतनी सारी बातें करी। और बाय द वे आज तो फिल्म रिलीज हो गई है भाई, जंगल पे वेलकम वेलकम। चलना अंतरा चलना देख कर आए।
4: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है। मैं ऑनेस्टली आपसे पूछना चाहती हूँ
3: जी,
4: ऑनेस्टली एकदम, कि आपको क्या लगता है कि मूवी कैसी होगी?
3: देखो नमक खाया है, मूवी बहुत अच्छी होगी, सीधी सी बात है। हम तो हमारा बिल्कुल रिव्यू जो है बेस्ड होता है ऑन वो क्लाइंट हमारा है कि नहीं है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जब जब क्लाइंट का प्रमोशन खत्म हो जाए फिर हम जाके बताते हैं कि हमें क्या फील है। सो एज ऑफ नाउ द मूवी इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट, बॉडी स्टार स्टडेड,
4: वेरी वेरी नाइस, यू मस्ट गो एंड वॉच
3: जी। अच्छा एक्चुअली भूत बंगला, जिसके बारे में आई वॉजन वेरी श्योर, ऑल्दो हमने प्रमोट करी थी वो फिल्म भी, आई वॉजन वेरी श्योर एट दैट टाइम। लेकिन अब जब सब लोग देख रहे हैं ना नेटफ्लिक्स पे, जब से वो आई है तब से लोग बोल रहे हैं यार ये तो मूवी बड़े पर्दे पर देखने के बड़े मजे आते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन।
4: But then I think so, this is going to be fun.
3: Yes.
4: एक तो because of the ensemble star cast, I am totally into it. सही है, एक साथ एक स्क्रीन पे सारे एकदम सही वाले चेहरे दिख जाएंगे।
3: बिल्कुल।
4: I'm looking forward to it.
3: I am too. So शाम को वहाँ पर चलते हैं और देख कर आते हैं 8 बजे का शो। अच्छा दूसरी बात, अभी हाल ही में एक अनिल कपूर का इंटरव्यू हो रहा था। I know we don't talk Bollywood here, but this is something which we must. अनिल कपूर का इंटरव्यू था, रिपब्लिक चैनल पर था, एंड यू नो अर्नब ने उससे पूछा ये बात कि भाई अगर तुम्हें एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कहना चाहोगे। इतना बोरिंग जवाब दिया अनिल कपूर ने कि मैं ना, आने का यार इसके डायलॉग राइटर नहीं है तो मतलब ये एक जवाब भी नहीं दे सकता ढंग का। ही सेड मैं ना प्यार बोलूंगा, सबको प्यार करो आपस में, बिकॉज देयर इज अ डर्थ ऑफ एग्जैक्टली इट वॉज अ है आंसर। मैं नॉर्मली लिखती नहीं हूँ कॉमेंट्स ऐसी ऐसी चीजों पर, बट आई एक्चुअली मेड द एफर्ट टू राइट ओवर देयर व्हाट अ डर रिस्पॉन्स। आई विश आई कुड सी अर्नब्स फेस इंस्टेड ऑफ हिज फेस राइट नाउ, यू नो कम ऑन।
4: क्या कर दिया सर, मतलब नायक मूवी का पूरा वही उतार दिया हमारा नशा।
3: एग्जैक्टली, उसने इसीलिए पूछा था बिकॉज इसने एक्चुअली एक फिल्म में एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना था। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। पता आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो कोई नहीं, पूरे पूरे दिन वही शोज चलते हैं, सुनते रहो रेडियो मस्ती 24/7 पर, और शाम को मस्ती टॉप चार्ट्स पर आना मत भूलना। इन केस दिस इज द एनकोर यू लिसनिंग, तो संडे शाम को होता है मस्ती टॉप चार्ट्स का एनकोर। आय हाय,
4: ओ माय गॉड यार, मतलब
3: बाय।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
5: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: सस्वीकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लेजेंड्स की एक और अचीवर सीरीज में। मैं हूं आपका अपना दोस्त समर। आप मुझे अपना हम सफर कह सकते हैं, क्योंकि हम और आप एक साथ सफर करते हैं उन लोगों की जीवन यात्रा का जिनके होने से हम हैं, जिन्होंने हमारे लिए जिंदगी की राहें आसान की, जिनके जीवन के एक एक लम्हे की कीमत हमारे पूरे जीवन को देकर भी हम नहीं चुका सकते। आज हम फिर से एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलाने लाए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जहाज पर ले चलता हूं जिसका नाम है SS Empress ऑफ इंडिया, जो जापान के योकोहामा पोर्ट से अटलांटिक ओशन में तैरते हुए कनाडा के वैंकूवर की ओर जा रहा है। शिप बस कुछ ही देर में छूटने वाला है और लगभग सभी यात्री जहाज पर चढ़ चुके हैं। इसी जहाज पर ऐसे दो भारतीय यात्री भी शामिल हैं जो एक ही होटल में जापान में ठहरे थे। दोनों को ही इस बात का मालूम नहीं था और दोनों ही शिकागो जा रहे थे। ये मैं बात कर रहा हूं साल 1893 की, भरी गर्मियों के दिन थे, 1893, हॉट डेज। क्या आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं शिकागो से? आई गेस एक हस्ती को पहचान गए होंगे आप। एक और हिंट दे देता हूं मैं आपको, शिकागो की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, अब तो पहचान होंगे आप। चलिए क्यों फिर मैं आपको खामखा में सताऊं, मैं ही बता देता हूं। ये थे स्वामी विवेकानंद जो शिकागो जा रहे थे अमेरिका के लोगों के बीच भारत के रिलीजन और संस्कृति की बात करने, भारत का प्रतिनिधित्व करने। लेकिन लेकिन लेकिन आज हम स्वामी जी के बारे में बात नहीं करने वाले, हम उनकी बात करेंगे जिनसे स्वामी जी की मुलाकात होती है और दोनों शिप के पेवमेंट एरिया में चलते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की सबसे पहली रूपरेखा यहाँ तैयार हो जाती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या मैं आपको? तो म्यूजिक से बढ़िया थेरेपी और क्या होगी। बढ़िया सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं पूरी कहानी तफसील से सुनाता हूँ कि आज हम किस अचीवर की बात करने वाले। आप हैं समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: रहता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: चाहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh out loud moments to larger than life jungle camp madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: 3, 2, 1.
2: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
6: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
7: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
8: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। मैं आज आपको जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम अभी भी मैंने सस्पेंस में रखा है। पहेलियाँ बुझाना मेरा काम है। वैसे पहेलियों की आग भी मैं ही लगाता हूँ, यानी मैं लगाई बुझाई करता रहता हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर इस वक्त मैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और उनसे एक शख्स मिलते हैं उसी जहाज पर जो शिकागो जा रहा है, जिसमें स्वामी जी सवार हैं। और जो शख्स इनको मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या वो भारत में साइंटिफिक अप्रोच बढ़ाने के लिए, बच्चों को विज्ञान के करीब लाने के लिए एक इंसानियत भरा कदम उठा सकते हैं, साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का। वो शख्स इस बात से पूरी तरह अग्री करते हैं और 5 साल बाद स्वामी विवेकानंद जी को एक चिट्ठी लिखते हैं। क्यों उस जर्नी के बाद वो लोग कभी नहीं मिलते, इस चिट्ठी में वो लिखते हैं, स्वामी जी, आई ट्रस्ट यू रिमेम्बर मी एज अ फेलो ट्रेवलर ऑन योर वॉयज फ्रॉम जापान टू शिकागो। मैं रिसर्च सेंटर खोलने वाला हूँ, पर आपसे बेटर गाइड और लीडर नहीं हो सकता इस मिशन के लिए। हालांकि स्वामी जी ने वहां आने से मना कर दिया और अपनी साथी सिस्टर निवेदिता को वहां भेज दिया। रिसर्च इंस्टीट्यूट को तब के वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने खुलने नहीं दिया। फिर काफी और भी कोशिशें की गईं, लेकिन ये सपना ऐसे रह गया जैसे कोई मेल ड्राफ्ट में रह जाती है ना, भेजी ना जाए, बस वहां पड़ी रह जाए गलती से। हालांकि रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना, लेकिन तब तक दोनों ही शख्स इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। उनके भी 5 साल बाद, ये साल था 1909, इंस्टीट्यूट था द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और वो जो दूसरे शख्स स्वामी जी के फेलो ट्रेवलर थे, वही हैं आज के हमारे लेजेंड जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज के जन्मदाता। आज उनकी ही जर्नी को हम तय करेंगे, पर क्यों ना थकान ना हो, इससे बचने के लिए कुछ चाय पानी हो जाए, हा? एक स्टॉपेज तो बनता ही है, क्या कहते हैं आप, एक ब्रेक ले लेते हैं, इसमें कुछ बेहतरीन गाने सुनिए और इस कहानी को सुनने के लिए वापस लौट कर यहीं आइए, क्योंकि मैं सवर कर रहा हूं आपका इंतजार यहीं पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेल, फिर से एक बार इस्तकबाल कर रहा हूँ मैं आपका हम सफर समर, और आपके लिए आया हूँ आज इंडिया को सही मायने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत देने वाले जमशेद जी टाटा की कहानी। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब आपको आती होगी लेकिन बस थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहा हूँ कि वास्को डी गामा भी अपने छोटे से वॉयज को लेकर पहुंचे थे भारत, भारत के तट पर तब उन्होंने वापस अपने देश में जाकर यही कहा था कि लैंड ऑफ गोल्ड जाकर आया हूं मैं, और वहां से फिर यूरोपियन इन्वेजन हुआ भारत में। लेकिन भारत का बिजनेस उससे पहले अरब बाजार में होता ही था। मुगलों के आने के बाद इंडस और गंगा नदी के किनारों पर रहने वाले लोग ज्यादा बिजनेस किया करते थे। ज्यादातर गुजरात और सिंध के लोग जाते थे बिजनेस के सिलसिले में बाहर। इसके बाद आए ब्रिटिश लोग, और उन्होंने भी नदी के किनारे बसे सूरत और कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, वहां से बिजनेस शुरू किया, चाय का बिजनेस शुरू किया, इवन टेक्सटाइल का बिजनेस भी किया। इंडिया उस वक्त कॉटन का एक बड़ा प्रोड्यूसर था, इवन साउथ अफ्रीका भी। अंग्रेजों ने सारा कॉटन अपने देश भेजना शुरू कर दिया। इससे भारत के किसानों और कपड़ा बुनने वाले छोटे छोटे उद्योगों को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन ये स्थिति बदलने लगी। इंग्लैंड के लैंकशायर में कॉटन मिल्स के भीतर ही भीतर बहुत कुछ ऐसा हुआ कि वहां स्थिति खराब होने लगी। तब भारत में ही कपड़ा बनाया जाने लगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कॉटन मिल्स बनने लगी और गुजरात के बहुत सारे व्यापारी व्यवसायी बॉम्बे में आने लगे। टेक्सटाइल में अपनी छोटी छोटी सी इंडस्ट्री लगाने लगे। यहाँ से एक अलग ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में शुरू होता है। गुजरात के जो लोग बिजनेस से जुड़े ये मोस्टली पारसी कम्युनिटी के थे, और जो हमारे आज के लेजेंड हैं वो भी तो पारसी हैं। उनकी जिंदगी के चैप्टर के पहले पेज पर चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक और ले लेते हैं उसके बाद। क्या कहते हैं आप? बने रहिए समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव सुनते हुए।

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents The Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
2: क्या जी?
3: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आज एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं हूँ समर लेजेंड्स वाला और आज लेजेंड्स की सचिवर सीरीज में मैं आपको मिलवा रहा हूँ जमशेद जी नुसरवान जी टाटा से। और इसके लिए मैं आपको कॉलोनियल इंडिया की सैर पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर ब्रिटानी हुकूमत है। और ऐसे में 3 मार्च 1839 को 1839 3rd March 1839 को गुजरात के एक छोटे से शहर नवसारी शहर के पारसी परिवार में जन्म लेता है एक बच्चा। इस परिवार की सारी जनरेशन अब तक यही काम करती रही है, पूजा पाठ का। सभी लोग पादरी हैं, लेकिन इस प्रथा को तोड़ेगा ये बच्चा किसने जाना था। जिस परिवार में आस्था की कैंडल में धागा जलाया जाता रहा, मगर वो धागा बनाएगा ये किसने सोचा था। हालांकि इनके फादर नुसरवान जी ने नवसारी में ही अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था। उन्होंने प्रिस्टली खानदानी परंपरा के बिल्कुल इतर, इसी के साथ वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। ऑल्दो वो जब महज 5 साल के थे, उनकी शादी हो गई थी जीवन बाई से, और इन्हीं से उनके 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें सबसे पहले नंबर के बच्चे थे जमशेद जी। बाकी 4 छोटी बहनें थीं, रतनबाई, मानकबाई, वीरबाई और जेरबाई। जमशेद जी के फादर नुसरवान जी बॉम्बे चले गए। 1850 के करीब वहां उन्होंने अपना ट्रेडिंग का काम बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि फैमिली भी बड़ी हो रही थी, जरूरतें भी बढ़ रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट पीरियड में पोर्ट वाले इलाकों में बहुत अच्छा काम हो रहा था, बिजनेस की काफी अपॉर्चुनिटी थी, लिहाजा नुसरवान जी का बिजनेस चल पड़ा। वो अफीम का बिजनेस करने लगे, क्योंकि उस वक्त हर्बल प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी। खासकर युद्ध के दौरान अगर कोई घायल हो जाए तो अफीम बड़ी कारगर साबित होती थी। 14 साल के होते ही जमशेद जी भी बॉम्बे आ गए और वहां अपनी एजुकेशन पूरी करने लगे। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उनके भीतर एक बात और खास थी, वो क्या थी वो एक ब्रेक के बाद आप जान पाएंगे। तो एक कॉफी ब्रेक तो यहाँ बनता ही है। आप भी सोचते होंगे यार समर कितनी कॉफी चाय पीते हो। नहीं नहीं, मैं ब्रेक लेता हूँ ताकि आप भी कभी पी लिया कीजिए। चलिए इस ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं आपसे यहीं पर। यह है रेडियो मसी 24/7 लाइव का लेजेंड्स अचीवर सीरीज शो। मैं हूं समर आपके साथ।

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। आज लेजेंड्स के सफर पर हमारे साथ हैं जमशेद जी टाटा, जिन्हें फादर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया कहा जाता है। जमशेद जी ने बॉम्बे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे और वो कॉलेज की स्टडी करने लगे, लेकिन उनकी खास बात थी कि वो बेहद धार्मिक किस्म के इंसान थे। जी हाँ, जो उनके भीतर सबसे खास बात थी वो यही थी कि उन्होंने अपने ज़ोरास्ट्रियन ट्रेडिशन को भी पूरी शिद्दत के साथ निभाया। दरअसल ज़ोरास्ट्रियन ईरान के माइग्रेंट्स हैं जो भारत में आकर बहुत पहले बस गए थे और पारसी कहलाए। जमशेद जी ने ये ट्रेडिशन निभाया। वो पारसियों का एक स्पेशल ड्रेस होता था ना, वही पहना करते थे और हमेशा अपनी धार्मिक किताब द ज़ेंडा वेस्टा के एक सिद्धांत को फॉलो करते थे, हुमते हुक्ते एंड हर्वेस्ते, पवित्र विचार, पवित्र वचन और पवित्र कर्म। वेल, जब उनका कॉलेज खत्म हुआ तो वो ग्रीन स्कॉलर बन गए, यानी आज के ग्रेजुएट के बराबर। और इस बीच उनकी शादी भी हो गई हीराबाई दाबू से, और यहाँ पर उनके कई दोस्त भी बने, जैसे दिनशो आइडुल जी वाचा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और इंडियन मर्चेंट चैंबर्स में भी अच्छी पोजीशन पर थे। ये वक्त था जब 1857 की क्रांति हुई, यानी सिपाही म्यूटनी, अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला विद्रोह, और पूरे इंडिया में सिचुएशन खराब होने लगी। जगह जगह विद्रोह और रियासतें एक होने लगी। बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में पूरा भारत एक हो गया और ऐसे में काफी नुकसान हुआ बिजनेसमैन को भी। ब्रिटिश लोग ज्यादा सख्त हो गए। जमशेद जी अपने देशवासियों पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने ठान लिया खुद को इससे बाहर निकालने का, और वो अपने फादर के साथ बिजनेस में जुट गए। और इस बीच उन्हें मिला उनका पहला बेटा दोराब जी। ये साल था 1859, और इसके आगे की टाइमलाइन पर हम ले जाएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कितनी लंबी दूरी तय कर चुके हैं हम। हाँ, देखिए, मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

और आगे बढ़ाया और शंघाई में कॉटन, सिल्क, टी और मेडिसिनल चीजों की ट्रेडिंग करने लग गए। और आखिरकार जमशेद जी ने एस्टेब्लिश की चाइनीज मर्चेंट के साथ मिलकर चाइना में टाटा एंड कंपनी, और इसके लिए वो 4 साल तक वहां रहे। इस बीच अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ 1861 to 1865। ब्रिटेन में कच्चे सूत यानी कपास की डिमांड बढ़ने लगी। नुसरवान जी की फर्म ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया और यूरोप में फैक्ट्रीज को कॉटन सप्लाई करने लगे। टाटा कंपनी ने कॉटन ग्रोइंग रीजंस में अपने एजेंट्स भेजने शुरू कर दिए ताकि डिमांड एंड सप्लाई को बराबर बनाए रखें। जमशेद जी भी जापान, अमेरिका और फ्रांस जाते रहते थे ताकि लगातार आने वाले बिजनेस को दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाएं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। दरअसल जमशेद जी इंग्लैंड जा रहे थे क्योंकि वो एक बैंक बनाना चाहते थे जो इंडियन लोगों की मदद कर सके और उन्हें फाइनेंस करे अगर वो अपना काम करना चाहें तो। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ। कैसा हुआ? अच्छी जनाब, एक ब्रेक लेकर लौटते हैं, तब बताऊंगा क्या हुआ कैसा हुआ। आप सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स में। आज जमशेद जी टाटा की कहानी समर की जुबानी।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: 1/2 kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: झुमका गिरा रे, हाय झुमका।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम कहाँ थे? जी, हम यहीं थे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, और मैं समर आपको सुना रहा था आज जमशेद जी टाटा की कहानी। तो हम कहाँ थे इस कहानी में? हम थे जमशेद जी के साथ इंग्लैंड के सफर पर, जब वो चाहते थे कि इंडियन बिजनेसमैन की मदद के लिए एक बैंक स्टैब्लिश करा जाए। लेकिन आप वक्त का खेल देखिए साहब, जो शख्स बैंक खोलना चाहता था उसकी खुद की जेब में एक भी रुपया नहीं बचा। हुआ यूं कि अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ और फिर से ब्रिटिश लोग वहीं से कॉटन की सप्लाई लेने लग गए। नतीजतन भारत में कॉटन का बिजनेस करने वाले सारे के सारे व्यवसायी धराशायी हो गए। बस यही टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। बैंक खोलने की बजाय वो लंदन पहुंचे और वहां की बैंकों से संपर्क किया कि कहीं से मदद मिल जाए। इंग्लैंड की बड़ी बैंक्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड रॉयल एक्सचेंज में वो गए और अपनी बात करने और कन्विंस करने के अंदाज से उन्होंने श्रूड बिजनेसमैन को भी अपनी बातों से मना लिया और उनको हर महीने फाइनेंशियल हेल्प मिलने लग गई। और यहाँ पर उनको दो ज़ोरास्ट्रियन मिले जिन्होंने उनकी लाइफ को बदलने में बड़ा रोल अदा किया, और ये दोनों थे दादा भाई नरोजी और फिरोज शाह मेहता। आप लोगों ने भी इनके नाम जरूर सुने होंगे। दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती दौर के नेता थे, एक तरह से फाउंडर मेंबर ही थे। इसके बाद आया साल 1868, तब शुरू हुआ इटली और इथोपिया के बीच सेकेंड वॉर, एबिसिनियन वॉर। इसका बड़ा फायदा हुआ जमशेद जी को। एक्चुअली उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी भेजी गई और लगभग 16,000 लोगों के लिए सप्लाईज की जरूरत थी, क्योंकि युद्ध मालूम नहीं था कितने महीने चलने वाला है। जमशेद जी को बस इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री कर ली थी, लेकिन कैसे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और अलेक्जेंडर की तरह विश्व को फतेह करने की ठानी। आप अलेक्जेंडर वर्ड को याद रखिएगा, मैं एक ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगा, इस वर्ड को तफसील से समझाऊंगा। आप सुनते रहिए समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आपको याद है मैंने आपको किस वर्ड के साथ छोड़ा था? अलेक्जेंडर। हाँ जी, यही था वो वर्ड जिस पर मैं आपको छोड़कर गया था। जमशेद जी ने जब टेक्सटाइल वर्ल्ड में एंट्री की तो उन्होंने बॉम्बे के चिंचपोकली में एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को खरीदा और इसे कॉटन मिल में तब्दील कर दिया और इसी मिल का नाम रखा गया अलेक्जेंड्रा और एब्सिनियन वॉर में कपड़े की सप्लाई शुरू कर दी। लेकिन इस मिल में कपड़ा उतना अच्छा नहीं बुना जाता था जितना इंग्लैंड या कहीं और। 2 साल में ही इसे एक लोकल मर्चेंट को जमशेद जी ने बेच दिया, वो भी भारी प्रॉफिट के साथ। इसके बाद जमशेद जी ने डिसाइड किया कि वो इंग्लैंड जाकर देखेंगे कैसे एक टेक्सटाइल मिल को ऑपरेट किया जाता है। इस बीच नुसरवान जी ने रिटायरमेंट ले लिया, अपने बेटे को सब कुछ संभाल दिया, लेकिन वो काफी बीमार भी हो गए थे। विदेशों में भी इलाज के लिए गए, चाइना भी गए और एक बार फिर से वहां अपनी ब्रांच बना दी और वहां का बिजनेस सौंप दिया अपने ब्रदर इन लॉ को जिनका नाम था दादा भाई, और इंडिया में जमशेद जी थे ही। तो इस तरह से ये एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई, वो भी तब जब तक कि दादा भाई गुजर नहीं गए। वेल, सबसे बड़ी बात ये थी कि इन सालों के दौरान जमशेद जी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी जानकारी ले ली थी और वो उसमें पूरी तरह डूब चुके थे। इधर ब्रिटेन और अमेरिका से खूब सप्लाई होता था कॉटन, सो कपड़ों का सरप्लस हो गया, बहुत ज्यादा कपड़ा बनने लगा। इस कपड़े को अब कहां बेचते, सो उन्होंने भारत में अपना मार्केट तलाशा। जबरदस्ती वो कपड़ा खरीदने को मजबूर किया गया, ये तो आप जानते होंगे। इसीलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। इधर वो ये आंदोलन चला रहे थे और दूसरी तरफ जमशेद जी ने सोच लिया था कि कैसे भी करके इंडियंस पर अत्याचार नहीं होने देंगे। उन्होंने इंग्लैंड में ऐसा क्या देखा, मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। स्टे कनेक्टेड।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा केजी मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
5: Radio must be 24/7 live पर समर के साथ आप सुन रहे हैं Legends Achievers.
6: ब्रेक के इस बार आपका स्वागत है. मैं हूं समर और आप आज मेरे साथ भारत के फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जमशेद जी टाटा की लाइफ जर्नी को तय कर रहे हैं. जमशेद जी ने इंग्लैंड के लैंकशायर में देखा वहाँ कॉटन से कपड़ा कैसे बनाया जा रहा था. वहाँ दिन रात बड़ा ही अत्याचार करके बूढ़े और बच्चों से काम कराया जा रहा था और ये लोग ज्यादातर गुलाम देशों के थे. ये देखकर उनका दिल बहुत पसीज गया और उन्होंने सोच लिया कि वो देश में ही कपड़ा बनाएंगे और सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएंगे, रोजगार देंगे लोगों को. उन्होंने वापस भारत आते ही नागपुर के राजा से एक जमीन खरीदी. बहुत बड़ी जमीन थी लेकिन थोड़ी मार्शी थी, सस्ते दामों पर मिल गई थी. फिर उसे भरवाया उन्होंने और साल 1874 में 1874 में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से उन्होंने इंडस्ट्री की शुरुआत कर दी. कंपनी की जनरल मीटिंग हुई 30 जून 1875 में. उस वक्त 2500 शेयर होल्डर्स कंपनी के पास थे और वहीं डिसाइड हुआ कि नागपुर में भी मिल खोली जाएगी. जमीन खरीदी गई, हर छोटे से छोटा काम वहीं कराया गया, जैसे लकड़ी का काम, स्टोन का काम, ताकि पैसे बचाए जा सके. इंग्लैंड से ट्रेनर बुलाए गए और कच्चा माल मंगाया गया. यकीन मानिए, उन्होंने कॉस्टिंग का 25% तक बचा लिया था और वो वहीं रहे ताकि मिल में काम करने वाले हर आदमी का ख्याल रख सकें, उनकी जरूरतें पूरी कर सकें. वेल, मैं अब आपको बताता हूँ जमशेद जी का स्मार्ट मूव और उनका दिमाग. उन्होंने धागा बनाने के लिए रिंग फ्रेम टेक्नोलॉजी का यूज किया जो इंग्लैंड वालों को भी नहीं पता था, भारत में भी कोई नहीं जानता था, लिहाजा उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर क्या, इसने उनकी एक स्मार्ट बिजनेसमैन के तौर पर पहचान बना दी, न सिर्फ देश में बल्कि अपने एम्प्लॉयज के बीच भी. इस बीच 1877 में 1877 में क्वीन विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय भारत का चार्ज ले लिया. जमशेद जी ने तुरंत एक और मिल खोली और उसका नाम रखा एम्प्रेस मिल. इसके बाद 1886 में उन्होंने विदेशी वस्त्रों को त्याग करने के लिए स्वदेशी मिल कंपनी लिमिटेड बनाई और ये सिलसिला चलता रहा. वो एकमात्र बिजनेस टाइकून थे. इस मोड पर एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आज की आखिरी मुलाकात के लिए.

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। आज मैं आपको सुना रहा हूँ लेजेंड्स में जमशेदजी टाटा की कहानी, टाटा कंपनी के फाउंडर। इस बीच जहाँ हमारी कहानी चल रही है, नुसरवान जी गुजर गए और एंट्री हुई उनके बेटे दोराब जी की, और साथ ही उनको ज्वाइन किया आरडी टाटा ने। ये उनके भाई के मुंह बोले बेटे के बेटे थे, लेकिन इस नाम में आर डिनोट करता है रतन, जो कि जमशेद जी के दूसरे बेटे थे, यानी ये हो गया JRD टाटा। साल था 1887। जमशेद जी ने कंपनी बनाई टाटा एंड सन्स अलोंग विद दोराब जी टाटा एंड आरडी टाटा। और इनके बारे में भी हम जरूर जानेंगे, क्योंकि कहानी यहाँ पूरी कहाँ होती है साहब,

जमशेद जी का सफर जारी था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से डिस्कस करके साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया, जिसका बाद में नाम हुआ IISc बेंगलोर, और आज भी वो यही है। जमशेद जी न सिर्फ एक बिजनेसमैन थे बल्कि एक बहुत बेहतर इंसान थे। शायद यही वजह है कि आज उनका नाम आते ही हजारों लोग याद आते हैं, जिनको उन्होंने पहनने को सस्ता कपड़ा, रोटी और जगह उपलब्ध कराई। वो एक लविंग और शार्प एम्प्लॉयर थे, हमेशा ध्यान रखते थे जो लोग काम करें उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उस वक्त वो सुविधाएं दी जब पूरे वर्ल्ड में कहीं वो उपलब्ध नहीं थी, और वो थी अपने एम्प्लॉय के बच्चों और महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर। जी वेल, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। अभी मैं आपसे टाटा कहूंगा, क्योंकि आज टाटा की हम बात कर रहे थे। वैसे जमशेद जी टाटा ने सिर्फ टेक्सटाइल्स नहीं बल्कि स्टील्स के लिए भी काम किया, और सालों तक न्यूज बने रहे। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से वो जाने गए, और शायद तभी फेमस थिंकर थॉमस कार्लाइल ने अपनी एक स्पीच में कहा था, द कंट्री दैट हैज द स्टील हैज द गोल्ड। किसी और एपिसोड का इंतजार आपको देकर जा रहा हूँ, वेट फॉर मी। चलते चलते आप कहें वाह ताज, क्योंकि बॉम्बे को एक खूबसूरत सौगात भी जमशेद जी ने दी थी, और वो था होटल ताज। चलिए अभी जाने का वक्त है, फिर मिलेंगे। कहानी तो बहुत लंबी है, धीरे धीरे सुनाता रहूंगा मैं आपको, मिलता रहूंगा। बस आप भी यही कीजिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर स्माइल बनकर, मुस्कान बनकर सज जाइएगा। अभी चलता हूं, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, टेक केयर।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। Out loud moments to larger than life jungle ka madness. This entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
5: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

Welcome to your zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: Are you ready?
2: Are you ready?
0: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे सर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: आना चाहिए। आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
5: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
3: चेक इट आउट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। They are fresh. They are hot.

0: charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musti Top 20. Only on Radio Musti 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.

0: सस्वीकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Frosty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. आपकी नॉलेज आपकी जीत.
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें. समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन. Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे. पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. Musty Music Cafe.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats. So

0: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: And welcome. This is the one and only show जिसका इंतजार रहता है आपको हमको, क्योंकि इसकी जो पेस होती है ना बहुत ही अलग होती है। एंड ऑफ कोर्स एक इकलौता ऐसा शो जहां मैं आपको शाम को मिलती हूँ। वेलकम, स्वागत है आपका।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: ये एक ऐसा शो है बॉस जो कि आपको सुनना होता है टोटल वॉल्यूम ब्लास्ट फुल ऑन करके। रेडियो मस्ती 24/7 एब्सोल्युटली लाइव फ्रॉम द स्टूडियोज इज रेणुका विद यू। जी हाँ, फ्राइडे शाम को मैं वन लास्ट, वो कहते हैं ना टर्बो, एब्सोल्युटली लास्ट गियर पर लगाती हूँ अपनी गाड़ी और कहती हूँ देखो एक फाइनल पुश आज दे देते हैं शाम को, क्योंकि एनर्जी के साथ में छोड़ेंगे। वैसे फ्राइडे शाम को आपको किस एनर्जी की जरूरत है मुझे मालूम है कि आपके अंदर का जो छुट्टी का और जो आराम का और जो पार्टी वाला एक अवतार है वो टोटल फुल ऑन स्टाइल में होता है ऑन फ्राइडे इवनिंग। बट गाइस, व्हाट आर द प्लान्स फॉर द वीकेंड मुझे जरूर बताइए। आई हैव गॉट सम सॉलिड प्लान्स दिस वीकेंड बट आई एम गोना टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ लिटिल बाइट। फिलहाल के लिए यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर जो चल रहा है उसका नाम है मस्ती टॉप 20, मस्ती टॉप चार्ट्स। और इस मस्ती टॉप चार्ट्स में आप जानते हैं कि टॉप 20 गाने, और आज के दिन में मैं आपको बता सकती हूं कि धुरंधर के गाने ओहो एट देयर मिनिमम इन द लॉन्गेस्ट टाइम। भाई मजा क्यों आ रहा है ये मैं कैसे बता सकती हूँ, क्यों मैं आ गई हूँ शायद इसीलिए आ रहा है। रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका विद यू राइट फ्रॉम नाउ टिल 8 इन द इवनिंग, आफ्टर विच माय पार्टी शैल स्टार्ट। लेकिन फिलहाल के लिए आज मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप आज का गाना नंबर एक सोच ही नहीं सकते। और अगर आप सोच सकते हैं ना तो आई टेल यू बॉस, मैं घर आपके ना आपको जोर से एक हक देने वाली हूँ, बिकॉज वाओ यू कैन नॉट इमेजिन। बट ये मैं पूछती रहूंगी आपसे पूरे टाइम गाना नंबर एक कौन सा है आज के दिन में। रेडियो मस्ती 24/7। अप नेक्स्ट इज गाना नंबर 20 जो खैर पिछली बार 18 नंबर पर था, मतलब सोचो 20 पे आया तो अब अगली बार आउट और नॉट आउट देखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रेडियो मस्ती 24/7 एंड मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 20.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो। बॉलीवुड फ्लैशबैक।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम, तुम।
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: मुझे भी कुछ कहना है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी पहले मैं ही बता देती हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती
0: टॉप 20 विद रेणुका ऑन रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, फ्राइडे है तो यही वाला शो एब्सोल्युटली लाइव है, और अगर ऑन कोर सुन रहे हैं आप तो फिर संडे शाम होगी। 5:15 यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो अगला गाना है, वो इट्स अ न्यू एंट्री। जी हाँ, 19 नंबर पर एक न्यू एंट्री आप सुनने वाले हैं फ्रॉम द अपकमिंग हिंदी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म। याद होगी आपको धमाल सीरीज, आई एक्चुअली एंजॉयड दैट सीरीज। ओके, सो अब 10 जुलाई को, जी हाँ, ये जो हमारे वेटरन इंद्र कुमार का फ्रेंचाइज है, इसका चौथा इंस्टॉलमेंट भाई आ रहा है, और मैं तो कहूंगी कमाल की बात होने वाली है, देखना बनता है। जी हाँ, इट हैज अ स्पेशल सीन, ओके, जो कि मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। इस फिल्म में, धमाल 4 की बात कर रही हूं मैं, देयर इज अ हाईली डेंजरस क्लिफ सीन जो कि स्केड्यूल हुआ 15 से 20 दिन के शूट पर। को स्टार एंड प्रोड्यूसर अजय देवगन, जी हाँ, कोरियोग्राफी में घुसे और डायरेक्ट किया उन्होंने इन सीक्वेंसेस को अपने आप, रैपिंग अप द एंटायर स्केड्यूल तीन दिन में एंड नो हैवी रिलायंस ऑन CGI। आप सोच सकते हैं 15 से 20 दिन की चीज जब 3 दिन में बनती है, और वो भी अजय देवगन जैसे स्टंट मैन उसको खुद डायरेक्ट करता है, आई वांट टू वॉच इट। देयर इज द गाना नंबर 19, धमाल 4। कहर तो मचाएगी ये फिल्म जो कि 200 करोड़ में बनी है। जी हाँ, और अजय देवगन जो है 40 करोड़ की सैलरी लिए इन्होंने इसमें। नॉट बैड। लेकिन एक चीज जो आपको और हमें थोड़ी सी शायद खल सकती है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ अनिल कपूर, हु स्टार्ड इन द 2019 फिल्म टोटल धमाल। जी हाँ, वो इसमें नहीं है। अब इसके बारे में और भी बातें बताती रहूंगी, बट मार्क योर डेट्स, मार्क योर कैलेंडर्स गाइस, इट इज गोइंग टू बी 10th of July. गाना नंबर 18 लास्ट वीक था 17 नंबर पर, धीरे धीरे 20 और फिर आउट हो जाएगा बहुत ही जल्दी, मुझे ऐसा लगता है। रेडियो मस्ती 24/7, व्हाट्स योर चॉइस ऑफ गाना नंबर 1 टुडे गाइस, टेल मी 9151896 3। दिस इज रेणुका विद यू, योर गर्ल ऑन द एयरवेव्स ऑफ मस्ती 24/7।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song number 19.
4: Akatiri Mahatiya Ferikuri.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Trending song number 18.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: 5:25 यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स, और मस्ती टॉप चार्ट्स पर कौन शोर मचा रहा है माइक पर? मी, ओनली मी.
3: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20.
2: Me is telling you कि गाने शोर मचा रहे हैं. आपको क्या लगा? मैं अपने बारे में बता रही हूँ. रेडियो मस्ती 24/7 पर अगला गाना जो आप सुनेंगे, जी हाँ, गाना नंबर 17. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी जो अभी आपने सुना 18 नंबर पर, दैट इज वेलकम टू द जंगल. ये वाली फिल्म देखना बिल्कुल मत भूलिए. इस समय शो कर रही है सिंगापुर में. एब्सोल्युटली इट इज बीइंग स्क्रीन्ड एंड बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार बिल्कुल आगे ही आगे इस फिल्म में. और अर्ली रिएक्शंस जो कि देखे जा रहे हैं काफी पॉजिटिव हैं. बड़े सारे लोगों ने इसको बोला है इजी क्राउड प्लीजिंग वॉच, एंड बड़े सारे लोगों ने ये कहा है कि फैमिली एंटरटेनर है, ड्रिवन बाय कॉमेडी एक्शन एंड फैमिलियर फेसेस. कुछ व्यूअर्स ने कहा कि भाई गलतियां हैं कुछ कुछ स्क्रीन प्ले, विजुअल्स और म्यूजिक में, बट हु केयर्स, राइट? बिकॉज जहां सभी लोग फुली कन्विंस्ड नहीं है उसकी कॉमेडी के साथ में, कुछ लोग कहते हैं यार नथिंग बेटर देन द फन मोमेंट स्पेंट विद फैमिली. सुपर एंटरटेनिंग कहा जा रहा है इस फिल्म को, और साथ ही साथ में ये कह रहे हैं कि पहली हाफ से बेहतर है दूसरा हाफ, और अक्षय कुमार सुपर गुड, बाकी ने भी परफेक्ट काम किया है. लेकिन मजा तो सबसे ज्यादा आया है अक्षय कुमार को देख के. अक्षय कुमार याद है हाल ही में एयरपोर्ट पर जा रहे थे, और फनी बात यह हुई कि कुछ मीडिया वाले, आप तो जानते ही हैं, वहां पर खड़े हुए, और उन्होंने अक्षय को रोक के बोला कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो. एंड इंस्टेड ऑफ आंसरिंग कहां जा रहा है अक्षय, जो कि दिल्ली जा रहे थे, एंड दैट टू ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वहां पर ऑफकोर्स हमारे प्रधानमंत्री जी से जो योगा उनके साथ करने के लिए जा रहे थे अक्षय कुमार, तो इन्होंने जब पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो रुक के स्माइल करके अक्षय कुमार जी कहते हैं तू मेरा मामा लगा जो मैं तुझे बताऊंगा. Love the sense of humor and love the candid, casual behavior of this guy, I tell you. On Radio Masi, gana number 17.
4: Kaun hai wo?
2: Kaun hai wo?
4: Kaun hai wo?
2: बड़ा ये टेक्नो टाइप का ये गाना है, ये वाला पार्ट इसका स्पेशली. But this is from the new film which is releasing next week. It's called Baby Do Die Do. I'll try and talk more about this as we move along. Huma Qureshi ki ye film hai. Well, luck to raha hai, kafi badhiya hai, but I'll tell you more about it today on Radio Masi 24/7 Masi Top Charts. Coming up next, a beautiful retro followed by Gaana Number 17. Stay tuned.
5: Ek zabardast kahani hai.
6: Aur title kya hai film ka?
5: Welcome to the jungle.
6: Action, comedy, chaos and a star-studded cast.
7: Tisha Patni, Jacqueline Fernandez, Shetty and Akshay Kumar.
6: From laugh-out-loud moments to larger-than-life jungle ka madness, this entertainer promises a rollercoaster ride for the whole family.
8: Welcome to the jungle.
6: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island-wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs, Singapore.
9: Trailer khatam, paisa hajam.
10: 3, 2, 1.
6: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
0: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
11: Musty Song of the Hour.
12: Song of the Hour.

और कौन है वो जो आपके लिए लेकर आती है फुल टू बॉलीवुड का शो। जी हाँ, हर फ्राइडे शाम 5 से 8। मैं इनफैक्ट सोच रही थी कि इस शो का

0: फ्राइडे होता है, आप लोग भी थोड़े से पार्टी मूड में हो जाते हो, बड़े सारे आप लोग जो यहाँ पर मैसेजेस लिख रहे होते हो, मुझे बता रहे होते हैं यार आज हम ये करने जा रहे हैं, आज हम वो करने जा रहे हैं, आज हमारा फैमिली टाइम है, आज हमारे फ्रेंड्स के घर में पार्टी है, और सारी की सारी जो सेलिब्रेशंस है ना यूजुअली फ्राइडे इवनिंग्स को शिफ्ट हो जाते हो। मैंने कहा यार मैं यहाँ काम करूँ और आप लोग सारे खिसक लो, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ व्हाई नॉट ब्रिंग बैक द थर्सडे इवनिंग्स फॉर यू एंड आई, राइट? आई वुड एब्सोल्युटली लव इट। वुड यू और वुड यू नॉट? टेल मी मोर अबाउट इट। आफ्टर ऑल हमारे मस्ती 24/7 पर जो कुछ भी होता है वो आप लोगों से पूछे बिना तो होता नहीं है। तो भाई लिख के बताओ थर्सडे या फ्राइडे। आओ आओ नैना भी मिलाएंगे और बड़ा कुछ और भी बताएंगे रेडियो मस्ती 24/7 पर। मेरी अगली खबर कुछ ऐसी है कि जब रामायण, जी हाँ दैट मच अवेटेड नितेश तिवारी की रामायण, अगर उसका डेब्यू होना है, अगर उसका प्रीमियर होना है, तो आपको क्या लगता है वो भारत में होना चाहिए, श्रीलंका में होना चाहिए या फिर कहीं और होना चाहिए? Well, so let me tell you, हो सकता है कि इसका ग्रैंड इंटरनेशनल प्रीमियर दुबई में हो, क्योंकि जो ऑनगोइंग प्लान्स हैं अगर वो मटेरियलाइज हो गए तो भाई यूएई में होने वाला है। जब पहले ये आइडिया थोड़ा सा होल्ड पे हो गया था, आफ्टरऑल यूएई पे काफी कुछ पटाखे छटाखे चल रहे थे, तो खैर लग रहा है कि थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, गेटिंग नॉर्मल एंड स्लोली इट्स बिजनेस एज यूजुअल। सो अब देखते हैं कि होता है वहां कि नहीं होता, बट फिलहाल के लिए आई एम सो ग्लैड एवरीबॉडी सेफ एंड एवरीबॉडी इज वेल इन UAE। बढ़ते हैं आगे हमारे गाना नंबर 16 के साथ, जो पिछले हफ्ते भी 16 नंबर पर ही बैठा था। एंड आफ्टर दैट इज अ ब्यूटीफुल फ्लैशबैक सॉन्ग, डोंट गो एनीवेयर, रेणुका इज गोना बी विद यू टिल 8 इन द इवनिंग, स्टे ट्यून्ड।
1: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज, रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट। Trending song number 16.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Flashback.

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: लायन सिटी चैलेंज के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया, कर क्या रहे हो यार? जस्ट से LION लायन एंड व्हाट्सएप कर दो हमको भाई। ये जिंदगी में ना बड़े ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। लेट मी टेल यू, अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक ट्वाइस। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। मस्ती टॉप 20 पर इस समय रेनू का आपको बता रही है कि अगला गाना हमारा बड़ा ही स्पेशल है यार। नॉट ओनली बिकॉज इट इज अ हॉट रोमांटिक गाना विच इज हिटिंग द टॉप चार्ट्स, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज द वॉइस ऑफ अलका याग्निक आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम। अलका याग्निक कैसे आ गई है आवाज? वेल लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन ऋषभ कांत, जिसको कहते हैं द ऋष, एंड अलका याग्निक। अब आप कहेंगे भाई अलका याग्निक कैसे? शी इज बैटलिंग अ सीरियस लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन, राइट? यस यू आर राइट। उनके हियरिंग लॉस से रिलेटेड एक रेयर कंडीशन हुई है, जो कि हमने देखा हाल ही में जब उनको पद्म भूषण मिल रहा था, एंड वी ऑल फेल्ट दैट शी ट्रूली डिजर्व्ड दिस अवार्ड, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो होप शी इज एबल टू कम बैक एंड यू नो दोबारा से वापस आके गाना गाएं, हमको एंटरटेन करें यार। आफ्टर ऑल दीज वॉइसेस आर सो रेयर टू फाइंड। लेकिन पता लग रहा है कि उनके इस स्टूडियो से बाहर निकलने से पहले उन्होंने ये वाला गाना, लास्ट गाना रिकॉर्ड किया था, एंड देयरफॉर इट आल्सो बिकम्स मोर स्पेशल बिकॉज ऑफ दैट। एक झलक इस गाने की। The Rish and Alka Yagnik on the vocals, guys. This is Gana number 15. A new entry this week. 90s ka nostalgic style Bollywood romance. अरे अपना चेहरा, ये उन्हीं को गाने दूंगी मैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर, आई एम गोना सी यू नेक्स्ट आवर गाइस, कहीं मत जाएगा। एंजॉय दिस ट्रैक एंड मेक श्योर यू टेल मी यू लाइक इट। क्या ये 15 पर रहना चाहिए या आपको लगता है कि इसको पहुंच जाना चाहिए नंबर 1 पर? आई विल वेट फॉर यू गाइस टू टेल मी। आफ्टर ऑल दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर मस्ती टॉप चार्ट्स, एंड दिस इज योर गर्ल रेणुका। सीइंग यू नेक्स्ट आवर, स्टे ट्यून्ड।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
4: Check it out.
3: Trending song, number 15.
5: Meri aankhein soti hain, magar ye dil jaagta hai. Hai meri pyari, chaliya.

0: charts to ruling the countdown. Yeah, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: और हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल इलेक्ट्रिफाइंग आवाज आपके लिए और मैं टोटल एनर्जी के साथ में इंतजार कर रही हूँ। दिस मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेनुका।
2: दे आर फ्रेश,
1: दे ऑफ कोर्स दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन हैपनिंग। तो आप भी हैं और यहीं पर क्या हैपन हो रहा है आपके साथ, वेल दैट इज मस्ती टॉप चार्ट्स। और अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं, वेल उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल और भी तो बड़ी सारी बातें करने को। रेडियो मस्ती 24/7 पर रेनुका आपको बता रही है कि भाई मैंने आज शाम से आपसे, मतलब हमारे पिछले घंटे में आपसे एक दो सवाल पूछे। एक तो ये कि आज का गाना नंबर एक कौन सा होने वाला है। वेल लेट मी गिव यू अ हिंट हिंट हिंट एंड द हिंट इज दैट गाना पहली बार बज रहा है हमारे शो पर और पहली बार ही पहले नंबर पर बज रहा है। मतलब क्या बात है। और पहला ही ऐसा गाना इन द लॉन्गेस्ट टाइम जो कि पहली बार आते ही पहली ही बार में पहले ही नंबर पर बज रहा है। सो बड़े सारे पहले रिलेटेड है इसके साथ में, लेकिन इतना भी हिंट बताऊंगी कि पहली बार आप कान में नहीं सुन रहे हैं। ओ ओ ओ, नाउ दैट गेट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग। वेल इट इज समथिंग जो पहले भी आया था कुछ साल पहले ना। जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ टाइम्स आई सेड पहला पहले पहले। आई नो यू गाइस मस्ट बी हेटिंग मी राइट नाउ, बट लेट्स सी इफ यू कैन रियली रियली गेस दिस गाना। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक व्हिच इज अ रीलॉन्च्ड वर्जन ऑफ अ सॉन्ग ऑफ द सेम नेम की फिल्म जो कि आई थी कुछ साल पहले। अब बहुत बता दिया हाँ, नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी कौन सा गाना होने वाला है नंबर वन। लेकिन फिलहाल के लिए आई एम एक्साइटेड नॉट अबाउट द नंबर 14 which is going to play right now, but for number 13. Pehle 14 bataun. Bhoot Bangla ke soundtrack se. This was on number 14 last week as well, and it has stuck to the number 14. नहीं नहीं, हम दुबई नहीं पहुंच गए हैं। वाह क्या गाना है, मतलब बेली डांसिंग करने का मन कर गया मेरा तो। लेकिन फिलहाल के लिए इस गाने के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ मैं रेडियो मस्ती 24/7 पर। स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस गाना इज कॉल्ड या बाबा एंड आई एम श्योर यू विल बी टैपिंग योर फीट। बाय द वे एक चीज नोट करी, अभी तक एक भी धुरंधर का गाना नहीं चला आज हमारे टॉप चार्ट्स पर, आगे भी नहीं चलेगा, देखते जाओ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
3: It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
4: Check it out.
3: Trending song. Number 14.

0: लगा ना कि बिल्कुल बेली डांस करने लग जाए या फिर देखने लग जाए या फिर याला कुछ ऐसा खाने को हो जाए कि लगे अरब देश में आ गए हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड यस द ट्रैक यू हर्ड जस्ट नाउ वाज कॉल्ड या बाबा।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: बड़ा ही vibrant सा high energy party anthem जो कि compose और production कहाँ से है? Indian American musician Sanjoy release हुआ globally on World Music Day. जी हाँ, अभी बस कुछ ही दिन पहले 21 जून को under the T Series label. और भाई इतना बताना चाहूंगी आपको मैं, ये जो गाना है ना, इसके कल्चरल रूट्स कहाँ के हैं? वेल, इट्स अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूज्ड एंड री इमेजिनिंग ऑफ द आइकॉनिक ट्यूनिशियन फोक क्लासिक सिडी मंसूर। अगर आपने ट्यूनिशियन गाना कभी सुना है, आपको पसंद है वो म्यूजिक, बट आई लाइक अरबिक इन्फ्लुएंस्ड म्यूजिक अ लॉट, सो इट इज वेरी मच ट्रेडिशनल अरबिक इन्फ्लुएंस्ड विद हाई टेम्पो सेलिब्रेटरी थीम्स रिदम, तो बड़ा ही मजा आया। और नोरा फतेही, जी हाँ, हमेशा दिमाग में नोरा फतेही का नाम आता है जब भी कोई ऐसा Arabic, you know, type का गाना आता है। So well, she is obviously known for her viral dance performances. लेकिन इस केस में नोरा फतेही ने actually co-write भी किए हैं the lyrics and गाया भी है। So you can imagine शिल्पा राव के साथ में नोरा फतेही on the vocals। वो हो हो हो, और बताने वाली मैं, oh my God, you lucky people, you have three amazing voices and people talking to you. एंड आपको पता है जो हमारे वेटरन बॉलीवुड आजकल बहुत ही छाए हुए राकेश बेदी हैं, उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड सा स्पेशल अपेयरेंस किया है इन दिस म्यूजिक वीडियो, अपना स्वैग, अपना डांस मूव्स दिखाते हुए, ऑफ कोर्स अपने प्यारे प्यारे कैरेक्टर जमाल जमीली से फ्रॉम धुरंधर। सो इनडायरेक्टली या देयर इज सम इन्फ्लुएंस ऑफ धुरंधर ऑन द सॉन्ग। आई होप यू एंजॉयड इट गाइस, राइट नाउ यू हर्ड इट ऑन नंबर 13 एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये गाना डेफिनेटली आगे जाएगा। फिलहाल के लिए हम आगे जाएंगे जहां पर आप मिलेंगे गान नंबर 12 से। है जवानी तो इश्क होना है, जी हाँ, तेरा हो जाऊं। लास्ट वीक इट वाज ऑन नंबर 12, दिस वीक इट इज ऑन नंबर 12। लेकिन बिफोर आई प्ले दैट, आई विल प्ले एन अमेजिंग सनम बैंड वाला गाना, विच इज ओहो रूप तेरा मस्त।
2: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: It's time for
2: Musti Song of the Hour.
5: Song of the Hour.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
2: Trending song number 12.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: और आपके मैसेजेस यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लायन लायन लिख के सब भेज रहे हैं। मुझे लगा एक सेकंड के लिए व्हेन आई रियली मिस्ड कि लायन लायन क्यों लिख रहे हैं लोग व्हाट्सएप पे मेरे, तो देन आई रियलाइज्ड ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट द लायन सिटी चैलेंज। दी हाँ, लायन सिटी चैलेंज एक ऐसा गेम है विच इज नॉलेज बेस्ड कम्प्लीटली, लेकिन मजा तो तब आता है जब उसमें कुछ बातचीत हो, कुछ पंगेबाजी हो, कुछ टीजिंग हो एक दूसरे की, कैमरा सब कुछ देख रहा हो और उसके बाद हम उसको ब्रॉडकास्ट करें। जी हाँ, समथिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ वेरी पॉपुलर गेम शो जो आप देखते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं, जिसमें हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन गेम आगे बढ़ता है और जीत होती है उस इंसान की जो हॉट सीट पर बैठा होता है, राइट?
0: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musty Top 20.
2: Musty Top 20 पर one more time I tell you to send us your entries for the Lion City Challenge. We would love to play that game with you. देखें तो सही कितनी general knowledge और कितनी मस्ती भरी है आप में। और हम बढ़ रहे हैं आगे इस टाइम पर, अगले हमारे जी हाँ काउंटडाउन की तरफ पहुंच रहे हैं हम, गाना नंबर 11 और 10 की तरफ। तो आप सोच सकते हैं कि धीरे धीरे धीरे धीरे वी आर ऑल्सो रीचिंग नंबर 1। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहूंगी गाना नंबर 11 जो है, इट इज फ्रॉम द साउंड ट्रैक ऑफ कॉकटेल 2। और जब तलक ये यही रहेगा नंबर 11 पर, तब तलक हम चलाते रहेंगे। जी हाँ, लास्ट वीक इज वेल इट वॉज अ नंबर 11 फॉलोड बाय नंबर 10।
3: जिन्नी सोनी लगदी है मैनू किसे होर ना लगे।
2: That's a very pretty, cute song, right? Very calming, beautiful. और पता लग रहा है कि ये वाला गाना पिछले हफ्ते नंबर 13 पर था और दिस वीक इट हैज गोन अप ऑन नंबर 11। भाई कॉकटेल 2 का चल क्या रहा है? हम तो हमेशा बोलते हैं कि जो फिल्में हम यहाँ पर बेचते हैं ऑन रेडियो मसी 24/7, वहीं पर वही फिल्में आगे बढ़ती हैं। वेल वी टॉकिंग अबाउट शाहिद कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदाना। जी हाँ, 70 करोड़ निकल चुके हैं, 7 दिन में कमा चुकी है ये फिल्म। वेरी इंप्रेसिव थिएट्रिकल रन डिस्पाइट द यूजुअल वीकडे स्लो डाउन। होमी जानिया की कॉकटेल 2 इस समय काफी बढ़िया परफॉर्मेंस। जी हाँ, एक्सलेंट ओपनिंग वीकेंड। और शाहिद कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदाना जो कि लीड रोल्स में हैं, इस समय लग रहा है कि इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग रोमांटिक एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर। हेल्दी साइंस है ऑफ सस्टेनिंग इट्स थिएट्रिकल रन। देखने बात ये है कि कब तक, कितने दिन तक चलेगी ये फिल्म, आपने देखी है कि नहीं? बाय द वे आई हैव नॉट वॉच्ड इट, बट सीम्स लाइक इट्स अ फ्रेश रोमांटिक ड्रामा विद फैमिलियर इमोशंस। आई विल ट्राई टू वॉच इट दिस वीकेंड गाइस। फिलहाल के लिए हम लेंगे छोटा सा ब्रेक हियर जस्ट टू गेट इनटू द गाना नंबर 11 एंड 10, एंड आई विल बी बैक इन जस्ट अ लिटिल बिट विद सम मोर खबरें। स्टे ट्यून्ड।
4: हिट अस ऑन द ग्राम, it's Radio Musty 24/7, and don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
5: Check it out.
4: Trending song number 11.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 10।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: और दूर से जो चीज हमेशा फ्लैशी फ्लैशी फ्लैशी लगती है, जब आप उसके पास जाते हैं तो पता लगता है कि असलियत में बहुत कुछ है वहां पर। रेडियो मसी 24/7 पर, दिस इज रेणुका विद यू एंड यू आर ट्यून्ड इन टू द हॉटेस्ट द स्पाइसीएस्ट द From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musty Top 20. Absolutely the spiciest countdown in town. तमिल सिनेमा की बात करना चाहती हूँ मैं। जी हाँ, तमिल सिनेमा जिसने बनाया बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, जैसे कमल हसन। आप सोच सकते हैं कि आज के दिन में ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू इंडियन एक्टर्स जो ही रह गए हैं टू मेक हु हैव एक्चुअली लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट बड़ी सारी लैंग्वेजेस में जिसमें भी उन्होंने काम किया, तेलुगु, मलयालम या कहिए हिंदी में, या फिर उनके फ्यू अपेयरेंसेज इन कन्नडा या एक बंगाली में भी। जी हाँ, विच डिड नॉट गो अननोटिस्ड थैंक्स टू हिज इमेंस एक्टिंग पोटेंशियल। कमल हसन ने अपनी हिंदी डेब्यू किया था 1974 में, आप जानते हैं। ही प्लेड अ स्मॉल रोल इन हिज मेंटर के बालाचंदर्स आईना, जो कि थी अ रीमेक ऑफ डायरेक्टर्स तमिल फिल्म अरंगेत्रम। जी हाँ, लेकिन उनका जो प्रॉपर बॉलीवुड में एंट्री हुई ना, दैट हैपेंड ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड लेटर फ्रेंकली। बट उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम आज के दिन में, हम बात कर रहे हैं अबाउट कमल हसन हिमसेल्फ। आप सोच सकते हैं एक दूजे के लिए हमने देखा 1981 में जब वो मेल लीड में वापस आए थे और रति अग्निहोत्री के साथ में, ऑल दैट। उनसे पूछा गया कि यार आप छोड़ के क्यों चले गए, मतलब आप सोचिए कि उनकी लास्ट हिंदी फिल्म आप देखिए कब हुई थी, चाची 420 1996 में, कैन यू बिलीव इट। उसके बाद हमने उनको देखा इन एंड आउट थोड़ा सा, हे राम 2000 में, अब है, या फिर विश्वरूप 2 सोच लीजिए, बट वी हैव नॉट रियली सीन हिम। अब उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों छोड़ गए, तो उन्होंने ये बोला कि भाई वो टाइम कुछ ऐसे थे कि मुझे काम करने में मजा आ रहा था, लेकिन आज के दिन में अगर आप बात करें अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, तो अंडरवर्ल्ड का बहुत ज्यादा घोटाला है। ही सेज दैट हिज डिसइंटरेस्ट इन गेटिंग एम्ब्रॉयल्ड इन ब्लैक मनी मैटर्स इज अ बिग रीजन फॉर बिडिंग गुड बाय टू हिंदी सिनेमा। अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस ना वहां रहने देता है, ना ही आप उसके बारे में कुछ और कर सकते हो। मैंने कहा ना, दूर से जो चीजें होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं कई बार, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो लगता है नहीं यार। मुझे ये गाना भी कुछ ऐसा ही लगता है। दूर से अच्छा लग रहा था, लास्ट टाइम नंबर 6 पे था, इस बार नंबर 9 पर है। जी हाँ, वल्ला फ्रॉम कॉकटेल 2 सुनते हैं साथ साथ। आई बी बैक टू इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट 2 गानास टू यू जस्ट इन अ लिटिल बिट। स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज रेणुका विद यू, रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती टॉप 20।
3: बॉलीवुड फ्लैशबैक,
4: अ

0: ये एक ऐसा शो है जो मुझे वाकई थका देता है, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ एनर्जी इन दिस शो गाइज. डू यू फील इट? डू यू फील इट? और डू यू फील इट?
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
0: देखिए ना, यहाँ से एक घंटे बाद निकलूंगी मैं, और उसके बाद मैं पहुंचूंगी एक डिनर पे, और डिनर के बाद मैं वहां पर बज जाएंगे 12:00, और उसके बाद मेरा बज जाएगा बैंड. बट क्या करें ना, हर चीज पसंद है, काम भी पसंद है, शो करना भी पसंद है, आप लोगों से गप्पे मारना भी पसंद है, साथ ही में टॉप चार्ट्स भी पसंद है, और फिर डिनर पर जाना भी पसंद है, फ्रेंड से मिलना भी पसंद है, और उफ, लेकिन जिंदगी में प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज एंड यू मस्ट प्रायोरिटाइज गाइस, नहीं तो बैंड बच जाएगा यार, जैसे मेरा बच रहा है. खैर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ दोज वुमेन आई रियली लुक अप टू, एंड दैट इज प्रियंका चोपड़ा. जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक फीमेल स्टार्स इन बॉलीवुड and at the peak of her career as well. अब सोचिए, पहले 10 साल उनके करियर के, she starred in 30 films, करे cameos, dance numbers, बहुत सारे औरों में, और फिर 5-6 फिल्म में एक साल में. even after she moved to Hollywood, Priyanka tried to maintain the pace of her work. लेकिन फिर आई मालती मैरी 2022 में. जी हाँ, उनकी बेटी की बात कर रही हूँ मैं. and recently Priyanka Chopra Jonas ने ये कहा कि जैसे ही मालती उनकी जिंदगी में आई, she sort of forced her to be more selective about her work and spending her time. Sahi baat hai ki nahi hai? Seriously, I tell you it is. And that is the next gana, Deewane Hai, coming up from the soundtrack of Welcome to the Jungle. Soniye jahan jahan tu hum wa. Very, very peppy, energizing gana, I must tell you. This is playing on Gaana Number 8. अभी प्रियंका चोपड़ा जोनस की बात जो मैं कर रही थी, वेल शी वाज स्पीकिंग एट द खान लायंस कॉन्फ्रेंस इन फ्रांस इसी हफ्ते, एंड प्रियंका ने ये कहा कि जिंदगी में आउटलुक और जिंदगी काफी बदल गई सिंस द लिटिल बच्चा केम टू हर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स शी जस्ट डजंट पैक हर बैग्स एंड गोज ऑफ फॉर अ मूवी एनीमोर. शी कैन नॉट डू 5 फिल्म्स अ ईयर. इन फैक्ट शी डज नॉट इवन ट्रैवल द वे शी यूज्ड टू.

0: and is very selective about the time she spends and who she spends it with. देखिए ना, जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज बहुत जरूरी हैं, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, आप उम्र में ही नहीं तजुर्बे में आगे बढ़ते हैं. That is when you realize, guys, no, you cannot waste your time. लाइफ में हर पल उस इंसान के साथ में बिताओ जो वाकई मायने रखता है आपकी जिंदगी में. Like it, I love it.
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song, number 8.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: All right, welcome to the third and the final hour. This is Radio Masti 24/7 and keeping you company since 5 in the evening is Renuka. Ji haan, Masti Top Charts par, agar aap sun rahe humko live, then this is Friday aur ab 7 bajne ke us paar hum mil rahe hain. Aur agar aap sun rahe humko encore mein, ji haan, the repeat show, then it, of course, this is Sunday. So happy Friday, happy Sunday, guys.
2: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on
1: And by the way, at this time, I do want to tell you ki hamara RJ Academy ka admissions are open. अगर आपको लगता है कि ये आरजे बनने के लिए है एकेडमी, तो नहीं, इसका नाम है मस्ती मीडिया एकेडमी. यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जाता है. यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको पब्लिक स्पीकिंग सबसे पहले बताई जाती है, किस तरह से करी जाती है, चाहे वो रेडियो के माइक पर हो या फिर कैमरे के पर हो, या फिर ऑफ कोर्स आप अपने कॉर्पोरेट में कहीं प्रेजेंटेशंस कर रहे हो, या फिर ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम यू जस्ट फील दैट यू नॉट एबल टू स्पीक इन पब्लिक, देन दिस इज जस्ट द राइट फोरम. अब बोलने से पहले सोचना जरूरी होता है, सोचने से पहले अगर आप लिख पाए तो वो भी जरूरी होता है. और इसीलिए इस शो में एंड टू एंड आपको ग्रूमिंग करी जाती है कि क्या चीज लिखनी होती है, कैसे लिखनी होती है, कैसे सोचनी होती है, और फिर उसको किस तरह से बोलनी होती है. हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू रियली कैरी योरसेल्फ, हाउ टू इंटरव्यू, हाउ टू डू पॉडकास्ट, हाउ टू रियली होस्ट अ शो. एंड इन केस यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द आरजे जर्नी, देन ऑफ कोर्स यू डू गेट अ हैंग ऑफ द मशीन्स एज वेल. तो हमारे स्टूडियो में लाइव शो देखिए, हमारे स्टूडियो पे लाइव शो करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं आप. इफ यू रियली इंटरेस्टेड, देन राइट टू अस राइट अवे, info@radiomasti.com.sg. जी हाँ, और बताइए हमको कि आपको वाकई हमारे मस्ती मीडिया अकेडमी में इंटरेस्ट है. एंड वी विल सेंड यू द एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू विल नो हाइब्रिड है या फिर पर्सनली आप आ सकते हैं सीखने के लिए. स्टूडेंट्स फ्रॉम 14 ईयर्स एंड अबव, होम मेकर्स, प्रोफेशनल्स, पैशनेट पीपल, कोई भी यहाँ पर बिल्कुल एडमिशन ले सकता है. एंड ऑफकोर्स हम आपसे मिलेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए हम बढ़ेंगे आगे हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स पर विद गाना नंबर 7. येट अगेन आई सी दिस गाना, तीसरा गाना है फ्रॉम वेलकम टू द जंगल, राइट? And this is a remake, obviously. Sunte Saath Saath, I'll be seeing you right after this gana for some things which are getting very exciting. Ji haan, Radio Masti 24/7 par, ye jo aakhri ghanta hota hai na, bada exciting hota hai. Gaane number 1 tak. Uff, guess kiya ki nahi kiya abhi tak kisi ne?
3: Hit us on the gram. It's Radio Masti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Masti 24/7 Singapore.
4: Check it out.
5: Trending song, number 7.

0: धूम तो आप मचा ही रहे हैं यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर रेनुका विद यू गाइस राइट सिंस 5 इन द इवनिंग। फिलहाल के लिए हम अपने तीसरे घंटे में आ चुके हैं धूम मचाते मचाते। आई एब्सोल्युटली लव दैट ट्रैक, डोंट यू?
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस।
0: और आपको वो गाना याद है, फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी? टेरिबल। मतलब मुझे ना कई बार वो मेरे अंदर का ना वो बहुत ही वैसा वाला इंसान जाग जाता है जिसको सारे जुम्मा चुम्मा दे दे ऐसे ऐसे वाले गाने सडनली पसंद आने लग जाते हैं। सो अभी भी वही निकल के बाहर आ रहा है बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है हमारे जो लास्ट के कुछ कुछ लाइनअप है इट्स प्रीटी मच लाइक दैट। सो चटनी विच इज कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस गाना,
2: कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी।
0: ओए नया गाना धमाल फोर के साउंडट्रैक से और सीधा ही आते नंबर 6 पर। I love it. I love these top performers, guys. Absolutely, they make you crazy, right? Chutney, बड़ा ही viral, high energy first track release हुआ है from the upcoming Bollywood comedy movie, which is Dhamaal 4. जी हाँ, और इंद्र कुमार की ये direction, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, July 10th को release हो रही है। Plot का connection कुछ ऐसा है कि Dhamaal की franchise twist है इस बार। Movie का जो plot है, उसमें 50 करोड़ का prize money है, which has been hidden inside chutney sacks, which are loaded within an MG vehicle. अब ये जो गाना है ना, it functions as a celebration of this bizarre, मतलब एकदम total treasure hunt जो कि 50 करोड़ के लिए हो रहा है और वो चटनी के अंदर छुपा हुआ है। Alright, so well, बहुत ही popular भोजपुरी folk गाना ये वाला, जैसा कि हम जानते हैं पहले भी हमने इसको सुना हुआ है definitely। नील कमल सिंह और ममता शर्मा की आवाजें हैं। जी हाँ, म्यूजिक को प्रोड्यूस किया है आदित्य देव ने विद अपबीट लिरिक्स पेंड बाय धीरज बबुआन। एक बार फिर से सुने।
2: कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे।
0: ओए होए, अरशद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी देखेंगे आपको इस फिल्म में। साथ साथ में सुनते हैं रेडियो मस्ती 24/7 का नंबर 6 कमिंग अप।
3: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट। Trending song, number 6.

0: चलेगी।
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: भाई मोस्ट रीसेंट फिल्मों में मैंने देखी ये फिल्म मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, और मैं भी वापस इसीलिए आया हूँ रेडियो मसी 24/7 पर। मुझे पता है आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। ऑल्दो द सॉन्ग दैट यू जस्ट हर्ड मस्ट हैव एक्चुअली एनर्जाइज्ड यू पार्टी ऑल नाइट।
4: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी।
3: पार्टी भी कर लेंगे। फिलहाल के लिए शो तो खत्म करें।
4: मस्ती टॉप 20।
3: जी बिल्कुल, मस्ती टॉप चार्ट्स पर मैं रेणुका आपके साथ 7:24 इस समय, और बात कर रही हूँ मोस्ट रीसेंट फिल्म जो मैंने देखी। जी हाँ, हमारी हिंदी फीचर फिल्म जो कि डायरेक्टेड है बाय नन अदर देन इम्तियाज अली। और अगर मैं कहूँ कि मुझे मौका शायद मिल सकता है उनसे बात करने का बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ऑन मस्ती AVI, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे बताइए बताइए। वुड यू लाइक टू टॉक टू इम्तियाज अली? बाय द वे, आपने देखी है मैं वापस आऊंगा? हाउ डू यू फील? टेल मी मोर अबाउट इट। नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ एंड वेदांग रायना, राइट? म्यूजिक ऑफकोर्स AR रहमान, लिरिक्स इरशाद कामिल। कमाल की कमाल की कमाल, एक से बढ़कर एक नाम जो मैंने अभी भी लिए। इमोशनल बैगेज एक्सप्लोर करती है ये फिल्म। ट्रॉमा, द क्रॉस बॉर्डर रोमांस विच वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड ड्यूरिंग द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया। अभी पूछने की बात ये है आपसे कि आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं देखी है। अगर देखी है तो मुझे बताइए उसमें सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगी, और अगर नहीं देखी है तो भी मुझे बताइए कि क्या पसंद नहीं आया है ना। क्योंकि गाना जो अब आ रहा है नंबर 4 पर वो है फ्रॉम द फिल्म नन अदर देन दिस वन। व्हाट एन अमेजिंग गाना। ये था नंबर 8 पर, जी हाँ, पिछले हफ्ते, लेकिन आज पहुंच चुका है नंबर 4 पर। नॉट टू फॉरगेट, आई स्टिल हैव टू टेल यू नंबर 5 पर कौन सा गाना है। है जवानी तो इश्क होना है। कमिंग अप नेक्स्ट, दीज टू गानास बैक टू बैक। गाइज, आई विल कम बैक एंड टेल यू द टॉप 3 सॉन्ग्स यू हैव टू टेल मी आज। एक्चुअली आज मैं आपको नहीं बताऊंगी टॉप 3 सॉन्ग्स, बिकॉज आई हैव गिवन यू इनफ हिंट कि यार नंबर 1 पर एक एब्सोल्युटली नया गाना है। सो द मोमेंट आई गिव यू द हिंट फॉर टॉप 3, आप बोलोगे यही वाला पहले नहीं चला, यही है। ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं हो सकता, बट आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इफ यू कैन गैस कौन सा गाना है टॉप नंबर 1, इट इज अ सॉन्ग जो आपने एक अलग वर्जन पहले सुना हुआ है फ्रॉम अ मूवी जो अलग, जी हाँ, प्रीवियस अपने फ्रेंचाइज में रिलीज हुई थी कुछ साल पहले। कम ऑन, यू कैन गेस इट नाउ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 5।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Musti 24/7.
2: Trending song number 4.

0: दिल चाहता है, अरे बहुत कुछ चाहता है दिल, तो दिल का क्या है मतलब, लेकिन फिर भी दिल का क्या कसूर अगर दिल चाहता है।
1: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on
0: क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। ये दिल के साथ में कितने सारे ड्रामे जुड़े हैं, नहीं दिल ही तो है यार जो आपके पास खिंचा खींचे चला आता है। रेडियो मसी 24/7, दिस इज रेनू का विद यू। यस, वी आर अप्रोचिंग द लास्ट 3 गाने ऑफ आवर शो टुडे एंड आप सोच रहे हैं अब तो तीनों धुरंधर के ही होंगे, तो बेटा नहीं है धुरंधर का। आपको पता है गाना नंबर 3 कौन सा है? पहले चला देती हूँ ना ताकि आपके जो भ्रम है वो टूट जाए। नंबर 4 से नंबर 3 पर पहुंचा ये गाना इस हफ्ते Cocktail 2 के साउंडट्रैक से। लेकिन why was I saying दिल चाहता है? Well, because 25 साल हो गए हैं दिल चाहता है कि उस फिल्म को, एंड 25 साल के बाद आफ्टर रीडिफाइनिंग मॉडर्न हिंदी सिनेमा विद दैट कल्ट क्लासिक। जी हाँ, सैफ अली खान और फरहान अख्तर इस समय ऑफिशियली दे आर ज्वाइनिंग फोर्सेज वंस अगेन। Saif Ali Khan is going to be the brand new untitled moral thriller producer. जी हाँ बिल्कुल, अख्तर और जावेद नहीं I'm talking about Farhan Akhtar and Ritesh Sidwani का premier banner जी हाँ जो है Excel Entertainment, उसमें ये दोबारा से वापस आ रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि suspense drama है, not a conventional one for sure. ये वाली film है ना, it is going to be talking about moral ethical dilemmas. जी हाँ, सोशल इश्यूज उठाएगा थ्रू एन इंटेंस नैरेटिव दैट कंबाइंड साइकोलॉजिकल टेंशन विद इमोशनल ड्रामा। इट साउंड्स एब्सोल्युटली एक्साइटिंग। सो अब देखने की बात यह है कि कास्टिंग प्रोसेस इस समय अभी भी चल रहा है। आपको रोल वोल चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू सैफ अली खान एंड ऑफ कोर्स सी कि वो आपसे काम करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, द नेक्स्ट ट्रैक एज ऑलरेडी सेड इज माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2 कमिंग अप राइट अवे, एंड आफ्टर दैट आई विल कम बैक वन लास्ट टाइम आपको बताने के लिए गाना नंबर 2 और गाना नंबर 1 कौन सा है। यू विल बी एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड। अभी तक किसी ने नहीं बताया बाय द वे मुझे कि गाना नंबर 1 कौन सा होने वाला आज के दिन में। गुड इवनिंग एवरीवन,
2: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट, ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 3।

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज।

0: Don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Wow, what a journey, guys. आज तो कमाल ही हो गया. किस किस तरह के नए नए गाने हमने इंट्रोड्यूस किए. आप जानते हैं, हमने आज के दिन में आपको सातवां तो अभी आने वाला है, बट छे ऑलरेडी नए गानों से इंट्रोड्यूस कराया है. एंड दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स, द ओनली प्लेस वेयर यू कैन स्टे अपडेटेड अबाउट बॉलीवुड ऑन द गो. हाउ वंडरफुल इज दैट.
3: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर spicy and they are happening. Join us on Musti Top 20.
2: पर इस समय हमारा ये जो शाम का सिलसिला है बस समाप्त होता है. But not before I tell you guys that I'm going to be around. जी हाँ, अभी फिलहाल आपके बातें और एडवाइस सुनने के लिए कि भाई ये गाना नंबर एक होना चाहिए था कि नहीं. So continue to write to me on 9151893. फिलहाल के लिए और भी चीजें बहुत सारी जो हमने आज आपको बताई, जैसे कि हमारा मस्ती मीडिया अकेडमी बिल्कुल एब्सोल्यूटली यहाँ पर खुल चुका है नई एडमिशन्स के लिए. तो आइए और हमारे साथ जुड़िए और सीखिए या हमें सिखाइए जरूर हाउ टू रियली बी एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग. And of course, you can get trained as a radio jockey apart from a podcaster and many, many other services that we offer. Take a look at our website, radiomusti.com.sg, under the Musti Media Academy, and you will know exactly what I'm talking about. फिलहाल के लिए यहाँ पर सीरियस बातें बंद, क्योंकि वीकेंड अब ऑफिशियली शुरू होता है. लेकिन हमारे हैं अगले दो गाने. गाना नंबर दो बताऊंगी, एक के लिए आपको रुकना पड़ेगा.
4: दूसरे नंबर पे है.
2: देखा, यही मैसेजेस आएंगे, मुझे पता था. राज भी गहरा हुआ कि कौन सा गाना है नंबर एक पर और धुरंधर का गाना नहीं है, ये भी बता रही हूँ. रेडियो मस्ती 24/7 पर टाइम फॉर रेनू का से गुड बाय गाइज, बट नॉट बिफोर आई विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड एंड ऑल्सो आस्क यू टू स्टे ट्यून टू रेडियो मस्ती 24/7 वेर एवर यू गो, वट एवर यू डू. ऑलराइट, वी लव यू गाइज एंड टेक फैंटास्टिक केयर ऑफ योर सेल्व्स बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन मंडे मॉर्निंग. आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट. और वीकेंड पर समर जी के साथ में आप सैटरडे एंड संडे 11 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा फॉर योर एवरग्रीन अमेजिंग गानास एंड ऑफ कोर्स द जर्नीज दैट ही विल लीड यू थ्रू. ठीक है, टेक गुड केयर गाइस, बाय, हैप्पी फ्राइडे.
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 2.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: यार नाटक लेकर, नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई चा भाई नचना ही पैदा।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
2: रात अकेली है
3: तो क्या, हम तो आपके

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: झुके जो तेरे नैना

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
0: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.